0: दाई नाच बा कहाँ जाए लग्नु त
1: पेसाब लाग्दा चर्पी जाइ टुका
0: ए रुको ना त पछि नोकलासे मै टर्च लाइट लट्ठी दिएटु लेख जाओ
1: काजे चुनु लट्ठी वा टर्च लाइट
0: का कर रही दाई राति बेला बाहिर निक्ल पर्लासे वा टोइलेट जाइ पर्लासे जहिया फे टर्च लाइट बार्ख को लम्बा लट्ठी देख के जाइ पर्था का कर कि बर्खा छ्याक बा साँप रहसे थ टर्च को अजराले सापन ल्या खसेक दै था वो लट्ठी ठ्याक ठ्याक आओ सुनख साफ भक्त का
1: हो कतरा मजा सल्लाह डेली मार छोटकी छाई
0: दाई हमन ना स्कूली मैडम सर मुख साफ नुख से ना ठाव सी न्याग पड़ला से वो काम कर पड़ला से जहिया फेठा फुसिया रिपोर्ट गई खो सीखे लाट का आम छेटवा दिवा झपा अथवा झांगा चलक ठाव में न्याग पड़ला से दम्मा लट्ठी देख ठ्याक ठ्याक बजेटी न्याग पठा गई खो कल बाट
2: साफ बर्खा छाकक समयमा सुक्खा ठाउँमा बैठ मन परैछ यी मौसममा आफन बस्यारामा पानी पैसना पिला कोर्से सुक्खा ठाउँको खोजीमा उक्रा बाहिर निस्कट
3: मुस मुर्गी जसिन आहाराको खोजी गर्न क्रममा फेर साँप मानव बस्ती लग्घ आइसक्छ
1: विश्वास लग्ना ओ सही जानकारी पाइक लाग ओ लगभग उपचार केन्द्र कहाँ बा कैथ पत्ता लगाइक लाग आधिकारिक वेब पेज snakebitenepal.org मा जाख आवश्यक जानकारी लिहेसेक दिथा
4: नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय इपिडियोमोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा र राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा संचार केन्द्र विश्व स्वास्थ्य संगठन नेपाल WWF नेपालका साथै बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बद्ध सर्पदंश अनुसन्धान केन्द्र संघको सहकार्यमा रोटरी इन्टरनेशनल एवं रोटरी क्लब अफ काठमाडौँ मिड टाउनका साथसाथै विश्वभरका रोटरी फ्रेन्ड्स एवं पार्टनर क्लबहरूद्वारा जनहितका लागि प्रस्तुत सन्देश
5: जापुर अस्पतालमा छाला तथा यौन रोग विशेषज्ञ डाक्टर आउने बारेको सूचना टीकापुर अस्पतालमा छाला तथा यौन रोग विशेषज्ञ डाक्टर प्रकृति बराल हरेक हप्ताको सोमबार र बिहिबार बिरामी जाँच गर्न आउनुहुने भएकोले छाला तथा यौन रोग सम्बन्धी समस्या भएका बिरामीहरूले विशेषज्ञ सेवा लिन आउन हार्दिक अनुरोध गरिन्छ टीकापुर अस्पताल टीकापुर कैलाली

0: के तपाईलाई थाहा छ?
1: एउटा प्लास्टिक झोला नष्ट हुन सयौं वर्ष लाग्छ। फालिएको प्लास्टिकले नदी, माटो, वनस्पति, जनावर र मानिसलाई असर गर्छ।
0: हो र?
1: हो त, हामीले तिनै प्रदूषणमा हुर्किएका विषाक्त वस्तुहरू खान्छौ, प्लास्टिकमा बोकेका झोल पदार्थ उपभोग गर्छौ,
0: अनि
1: खानासँगै प्लास्टिक जन्य पदार्थ पेटमा जान लागेकाले क्यान्सर जस्ता प्राणघातक रोगहरू लाग्न थालेका छन्। प्लास्टिक खानबाट जोगिन यसको विकल्प रोजौ।
0: के छ त विकल्प?
1: सामान बोक्दा कपडाको झोला प्रयोग गरौं, पकाएको तथा झोल खानेकुराहरू प्लास्टिकबाट टाढे राखौ।
0: विस्तारै गर्दा हुँदैन?
1: हुँदैन। टिकापुर नगरपालिकाले साउन 1 गतेबाट प्लास्टिकको झोला प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाइसकेको छ।
0: प्लास्टिक हटाऊ, पृथ्वी बचाऊ।
1: प्लास्टिक हटाऊ, पृथ्वी बचाऊ। टिकापुर नगरपालिका नगर कार्यपालिकाको कार्यालय सरसफाई शाखा टिकापुर कैलाली।
2: बाबु, ए बाबु, काल मनीष मेडिकल में जाइस तो?
3: मैं नहीं जाऊँ, वहाँ अपन अनुहार बिगड़ के घर से बाहर नहीं निकल छू।
2: उहे मारे तो तू ही वहाँ पठाई दो। यहाँ हेर, ई पत्रिका में लिखल बा मनीष मेडिकल में अब छाला संबंधी समस्या रहल बिरामी हुकन बढ़िया डॉक्टर वही से उपचार हुई था वही तोर समस्या फैन अस्ते बा जैबे तो समाधान हुई जाए।
3: ए हो दादू, अपन अनुहार बिगड़ के परेशान रहूं, तब तो मैं अब भी जाए।
4: याद करबी, मनीष मेडिकल हल टिकापुरमा प्रत्येक महिना के दोस्रो शनिबार काठमाडौँ के वरिष्ठ छाला यौन कुष्ठ तथा सौन्दर्य रोग विशेषज्ञ डाक्टर वा लोकेन्द्र लिम्बू से सेवा देती रहल बा। मनीष मेडिकल हल टिकापुरमा पुरान से पुरान अनुहारमा रहल चाया, पोटो, डन्डीफोर, दाँत, खुजली, भुटला झर्ना, कपार के तालु खुल्ना, डेन्ड्रफ, इक्जेमा, सोरियासिस, कुष्ठ रोग, पुरान से पुरान ठीक नै हुइल घाव, खतिरा ओ यौन दुर्बलता के उपचार होती रहल बा। संपर्क मनीष मेडिकल हल अस्पताल रोड टिकापुर, फोन नंबर 98600 71024 ओ 98046 77417।

0: बुका पिएरैठ कबु पेन्सिलेरैठ कबु झलै फटाका आजिठ का कना हो बाबा फ्यो ओस्टबाटिन गटिलो ठाउँ से झोला आनल से त लड़का सामान निहेरै
1: ओहो ई बुढा लिखबे का हुइति जलम भर भर बरैति रहत
0: का हुई कबु लड़का कपी हेरा कैठ कबु पेन्सिल हेरा कैठ कबु झोलै फटा कैठ बढ़िया ठाउँ से झोला लान नि छिक्ठो
1: अरे कहाँ से नानम त
0: कहाँ से लनबो वो त कहाँ टीकापुर म रलक रटगे यहाँ झोला उडोक मसे वहाँ झिंगरान दिदी कटरा सुगर झोला आनल बाटी ना कबु लड़का कहाँ पियरी थी ना कबू पेन्सिल रहीन ना झोला फाटल हुईन एक आनल झोला दस काटस बाटिन ये बुढ़ोक ढंग कबू पसल छान कर झोला नहीं आना से आकर ठुई
1: लिया लिया मैं अब भी ही जाइबू रख गई झोला उद्योग में रख गई झोला उद्योग हमारे यहाँ ढेर डिजाइन के झोला मिलत जैसे स्कूल बैग कैरिंग बैग फाइल बैग लगेज बैग लगाए के ढेर डिजाइन के झोला ऑर्डर कर अनुसार से बना जाए पुरान बिगड़ा झोला है मर्म फेंकरा जाए एक चोट सेवा करना मौका जरूर देवी
2: प्रोपराइटर राम प्रसाद रतगैया संपर्क मोबाइल नंबर 98484-22373।
3: मानसिक समस्या भएका बिरामीहरूका लागि सुनौलो अवसर अबदेखि टीकापुर अस्पतालमा मनोचिकित्सक डाक्टर लीला देवकोटा हरेक महिनाको प्रत्येक शनिबार आउँदै हुनुहुन्छ। ससानो कुरामा तनाव हुने बारम्बार मनमा एउटै कुरा खेलिरहने कुलटमा लाग्ने छटपटी हुने मुटु धेरै ढुकढुक हुने जीवनदेखि निराश लाग्ने जस्ता मानसिक समस्या भएका नयाँ तथा पुराना बिरामीहरूले साउन 9 गते 16 गते 23 गते र 30 गते शनिबारका दिन बिहान ठिक 10:30 बजे अस्पतालको कोठा नम्बर 1 मा सम्पर्क राख्नुहोला। टीकापुर अस्पताल टीकापुर कैलाली

0: बाबू ए बाबू कल मनीष मेडिकल में जाइस तो
1: मैं नहीं जाऊँ वहाँ अपन अनुहार बिगड़ के घर से बाहर नहीं निकल छू
0: वह मारे तो तुहिन वहाँ पठाई को यहाँ है पत्रिका में लिखल बा मनीष मेडिकल में अब छाला संबंधी समस्या रहल बिरामी हुकरन बढ़िया डॉक्टर वही से उपचार हुई था वही तोर समस्या फैल अस्ते बा जैबे तो समाधान हुई जाये
1: ए हो दादू अपन अनुहार बिगड़ के परेशान रहूं तब तो मैं अब भी जाय
2: याद कर भी मनीष मेडिकल हल टीकापुर में प्रत्येक महीना के दूसरा शनिवार काठमांडू के वरिष्ठ छाला यौन कुष्ठ तथा सौंदर्य रोग विशेषज्ञ डॉक्टर वा लोकेन्द्र लिम्बू से सेवा देती रहल बा मनीष मेडिकल हल टीकापुर में पुरान से पुरान अनुहार में रहल चाया पोटो डंडीफोर दाग खुजली भुटला झरना कपार के तालु खुलना डेंड्रफ इक्जेमा सोरियासिस कुष्ठ रोग पुरान से पुरान ठीक नहीं हुई घाव खतीरा ओ यौन दुर्बलता के उपचार होती रहल बा
3: संपर्क मनीष मेडिकल हल अस्पताल रोड टीकापुर फोन नंबर 9860071024 ओ 9846774417
4: छिछी फे चर्पी भर गिल का करना हो का
1: चर्पी भरल से फे का चिंता आदित्य सेफ्टी टैंकी सर सफाई में फोन करी आ बा का सर सफाई कई दी
4: फोन नंबर कटा हो ता
1: ली डायल करी 97-620-20-300
4: हेलो आदित्य सेफ्टी टैंकी सर सफाई हो
5: हजुर हो
4: महीन राजापुर बाजार में टैंकी सफाई करना बा
1: कंठे टीकापुर जानकी जोशीपुर भजनी सत्ती राजापुर गेरुआ वो लमकी मना सेफ्टी टैंकी गोबर गैस और रिंग वाला टॉयलेट सर सफाई कर परिकल से आदित्य सेफ्टी टैंकी सर सफाई सेवा हना समझावे संचालक शेरबहादुर थारू संपर्क नंबर 97-26-20-300 और 98-656-92-026

0: सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम के बिहान के 9 बजे थारू भाषा खोज खबर में यहां उक्रम स्वागत बा। खोज खबर से रतन चौधरी के राम राम। अभ्यर्थी खुकरे सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम 101 मेगाहर्ट्ज के संगे अनलाइन में www.tikapurfm.org मोबाइल एप हाम्रो पात्रो नेपाली पात्रो में फिर सुनती रहल बाटी। खोज खबर शुरू करी खबर के मुख्य मुख्य शीर्षक से टीकापुर अस्पताल के प्रयोगशाला प्रमुख उमेश बजगाई के आंखी और कान में चोट, अस्पताल व्यवस्थापन समिति सहयोग नहीं करल बजगाई परिवार के आरोप। कैलाली में आविन फिर मुक्त कमाया पुनस्थापना होना बाकी, शिक्षा स्वास्थ्य और रोजगार में पर्याप्त सहयोग नहीं हुई गुनासा। जानकी नौ बोकलोमा सहकारी के शेर सदस्य उकरण, कृषि सामग्री वितरण और विश्व कप में फ्रांस से हिटैती इंग्लैंड तेसरा बनल। असार 23 गते मारपीट में पर्लक टीकापुर अस्पताल के प्रयोगशाला प्रमुख उमेश प्रसाद बजगाई के आंखी और कान में चोट लागल बा। बजगाई परिवार के काली अस्पताल परिसर में पत्रकार सम्मेलन करती ऐसी जानकारी करैले खो। बजगाई के छावा ईश्वर बजगाई से अस्पताल व्यवस्थापन समिति के सहयोग नहीं पैलक आरोप लगैले बाटे। बजगाई के दादू वासुदेव बजगाई अस्पताल भित्रे विलक घटना है, व्यवस्थापन समिति से गंभीर रूप में नई लेलक बटोले बाटे। बजगाई है मारपीट करुया फिजियोथेरापिस्ट अनिल तिवारी भर धरौती में छूटल बाटे। असार 23 गते अस्पताल परिसर में दोपहर के अस्पताल के आंतरिक व्यवस्थापन के विषय में हुईलक छलफल में विवाद बढ़ल पाछे प्रयोगशाला प्रमुख बजगाई है अस्पताल के फिजियोथेरापिस्ट तिवारी मारपीट करल रह। मुक्त कमैया मुक्ति हुईलक 26 वर्ष पूरा हुईलबा। कमैया मुक्त हुईलक दिन के समझनामा 26 मुक्त कमैया दिवस मनागिलबा। जानकी गांवपालिका वार्ड नंबर 3 के लायकपुर में हुईलक कार्यक्रम में कमैया मुक्त कमैया हुकर सरकार के से मुक्त कमैया के शिक्षा स्वास्थ्य रोजगारो बसोबास के आबिन फिर ध्यान दे नहीं सकलक गुनासो करल बाटे। वहां उकरा विपन्नता के कारण मुक्त कमैया से सहज रूप में शिक्षा स्वास्थ्य सुविधा पैना नहीं सकलक गुनासो करल बाटे। मुक्त कमैया तमाम समस्या में पड़ल बा। वहां उकरा गुनासो करती बाटे। वहां उकरन के जग्गा समेत रलक उकरा फिर सुरक्षित जग्गा नहीं पैलक। कहीं जाने समेत असिके पूर्जा समेत पाके फे जग्गा नै पैलक। कयौं हुकरा परिचय पत्र समेत नै पैलक। वहां हुकरा गुनासो करल बाटे। बरघर बालकृष्णी चौधरी मुक्त कमैया हुकरन दीर्घारोगी लगलग उपचार नै पैलक। मरना अवस्थामा समेत सरकार से ध्यान देह पर्ना बटुआ गिलबा। मुक्त कमैया बस्ती के समेत कल्पुनिया थारूफे नया लायकपुर बस्ती जैना डगरामा सड़कमा लाइट नै हुलको रात के समय में आउजाउ करना समस्या हुईना दुर्घटना तथा आपराधिक घटना बढ़ती गैलक। सड़क मरम्मत में समेत सरकार के ध्यान आकर्षण नहीं पुगलक गुनासो करले बाटे। वह बस्ती में समेत विदेशी थारूफे जमरा लद्या के कटान तीव्रा पारलबा। जमरा लद्या के बस्ती ओर समेत धार परिवर्तन करलक। उसे लद्या नियंत्रण में समेत लगानी कर देना मांग करल बाटे। महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका मीना चौधरी फे मुक्त कमैया हुकरन रोजगार के समस्या समेत रलक। बार आईबेर सुरक्षित भवन नहीं हुलक। उच्च धारा शौचालय नहीं हुलक। एमना लगानी कर देना फे माग करले बाटे। जानकी गांवपालिका 3 के वार्डाध्यक्ष सुरेश चौधरी मुक्त कमैया के समस्या के बारे में अपने जानकार रहल बतोईती सरकार से मुक्त कमैया मुक्ति करलक कारण आज मुक्त कमैया के स्वतंत्र पूर्वक बांच पैना बतोईती आयल बाटे। विक्रम सम्वत 2057 साउन 2 गते नेपाल सरकार के अनुचित ऋण मिन्हा सहित के मुक्त कमैया के घोषणा कर गेल रह। ओकर एक वर्ष पाछे कमैया जारी कमैया श्रम निषेध एन 2058 से बंधुआ श्रम हुकरन कानूनी रूप में पूर्ण प्रतिबंध समेत लगा गेल रह। कमैया ऊपर सक्कू ऋण मिन्हा करके पुरान लिखित समझौता समेत स्वतः अमान्य करना सरकार के पुनर्स्थापना के लग घर जग्गा नगद सहायता समेत से विकास कार्यक्रम संचालन कर रह। मुक्त कमैया समाज कैलाली के उपाध्यक्ष सीता चौधरी के अनुसार अभी झंडे 5000 अभिन्द्र झण्डे 1500 मुक्त कमैया परिचय पत्र पैना बाँकियो 900 परिचय पत्र पायल हुंकरा जग्गा पैना बाँकी रहल बटोले बाटै खोज खबरमा एक घरी विश्राम पाछ फेरसै विश्वन्ति रवि सामुदायिक रेडियो टिकापुर एफएम
1: टिकापुर बहुमुखी क्याम्पसमा नयाँ विद्यार्थी भर्ना खुल्यो।
2: टिकापुर बहुमुखी क्याम्पसमा स्नातक तहका विभिन्न शैक्षिक कार्यक्रमहरूमा शैक्षिक सत्र 2083-84 नयाँ विद्यार्थी भर्नाका लागि प्रवेश आवेदन फारम वितरण भइरहेको ब्यौरा सम्बन्धित सबैका लागि जानकारी गराइन्छ।
1: संकायहरू व्यवस्थापन संकाय तर्फका शैक्षिक कार्यक्रमहरू
2: बीबीए र बीबीएस ऐच्छिक विषयहरू एकाउन्टेन्सी फाइनान्स र मार्केटिङ
1: प्रवेश परीक्षा सञ्चालन हुने मिति र समय बीबीएका लागि साउन 17 गते बिहान 8 बजे बीबीएसका लागि साउन 17 गते बिहान 10 बजे
2: शिक्षा शास्त्र संकाय बीएड ऐच्छिक विषयहरू इङ्ग्लिस नेपाली हेल्थ एण्ड म्याथमेटिक्स
1: प्रवेश परीक्षा साउन 23 गते बिहान 11 बजे
2: मानविकी तथा सामाजिक शास्त्र संकाय बीए ऐच्छिक विषयहरू इङ्ग्लिस डेभलपमेन्ट स्टडिज सोसियोलोजी एण्ड इकोनोमिक्स
1: प्रवेश परीक्षा साउन 24 गते बिहान 8 बजे कक्षा सञ्चालन भदौ 1 गतेदेखि
2: क्याम्पसका विशेषताहरू विश्वविद्यालय अनुदान आयोगबाट 1 वर्षदेखि निरन्तर गुणस्तरीय सुनिश्चितता तथा प्रत्यायन क्यूए प्राप्त सरकारी क्याम्पस
1: कुल विद्यार्थी भर्नाको 25% विद्यार्थीहरूलाई पूर्ण छात्रवृत्तिको व्यवस्था भएको
2: न्यून शुल्कमा गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गरिनुका साथै अनुसन्धान तथा नव प्रवर्तनमा जोड़ दिइने
1: पीएचडी तथा एमफिल गरेका अनुभवी प्राध्यापकहरूबाट प्राध्यापन गराइने
2: आईसीटी इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेज उद्यमशीलता लगायतका विभिन्न नन क्रेडिट कोर्सहरूका कक्षाहरू तथा विभिन्न अतिरिक्त क्रियाकलापहरू सञ्चालन गरिने
1: उपचार कक्ष ई लाइब्रेरी फ्री वाइफाई प्रोजेक्टर डिजिटल स्मार्ट बोर्ड सहितका कक्षा कोठा शुद्ध खानेपानी प्राथमिक उपचार कक्ष व्यवस्थित क्यान्टिन खेल मैदान लगायत सुविधा सम्पन्न भौतिक पूर्वाधारको व्यवस्था भएको
2: सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयका सम्बन्धन प्राप्त देशभरिका अन्य क्याम्पसहरूमा समेत स्थानान्तरण गर्न सकिने
1: कक्षा 12 पूरक परीक्षामा सहभागी विद्यार्थीहरूले समेत प्रवेश परीक्षामा सहभागी हुन सक्नेछन्
2: थप जानकारीका लागि क्याम्पस प्रशासनको फोन नम्बर 091-560-088 र 561-088
1: टिकापुर बहुमुखी क्याम्पस टिकापुर कैलाली
3: टिकापुर नगरपालिकाको आइरन तथा फोलिक एसिड खुवाउने कार्यक्रम सम्बन्धी सूचना
4: टिकापुर नगरपालिका अन्तर्गत रहेका सामुदायिक तथा संस्थागत विद्यालयहरूमा 10 वर्षदेखि 19 वर्षसम्मका किशोरीहरूलाई आइरन तथा फोलिक एसिड खुवाउने कार्यक्रम यही साउन 4 गतेदेखि 13 हप्तासम्म नियमित रूपमा रहेको ब्यौरा सरकारवालाहरूलाई यसै सूचना मार्फत जानकारी गराइन्छ
3: टिकापुर नगरपालिका नगर कार्यपालिकाको कार्यालय टिकापुर भागीरथी मेडिकल टिकापुरमा विशेषज्ञ डाक्टर आउने बारेको सूचना डाक्टर बमबहादुरको क्लिनिक भागीरथी मेडिकल सेन्टर टिकापुरमा साउन 9 गते दोस्रो शनिबारका दिन नेपालगंज मेडिकल कलेजमा कार्यरत धेरै अनुभवी र सिनियर मानसिक रोग मिर्गी रोग तथा नशा रोग विशेषज्ञ डाक्टर तनवीर अहमद खान एमबीबीएस एमडी न्यूरो साइकेट्री आउने भएकोले निम्न समस्या भएका बिरामीहरूले समयमै नाम लेखाई मौकाको फाइदा उठाउनका लागि सबैमा जानकारी गराइन्छ समस्याहरू मिर्गी रोग मुखबाट फिजाएर घाँटी बाङ्गो भई बेहोस हुनु मुटुको ढड़कन कम वा ज्यादा हुनु लामो समयदेखि टाउको दुख्नु छटपटी लाग्नु जिउ झमझम हुनु जलन हुनु चिन्ता मान्नु जीवनसित निराश हुनु आत्महत्याको इच्छा लाग्नु वा प्रयास गर्नु धेरै शंका मान्नु कानमा बोले जस्तो लाग्नु कोठामा एक्लै बस्न मन लाग्नु काममा मन नलाग्नु झर्को मान्नु रिसाउनु बिना कारण हाँस्नु मुस्कुराउनु रुनु घर छोडेर भाग्नु यौन इच्छाको कमी हुनु जाँड गाँजा चरेस रक्सी ब्राउन सुगर नशाको चक्की जस्ता कुलतलाई छोडाउने उपचार र मानसिक तथा नशा सम्बन्धी सम्पूर्ण रोगको उपचार र सल्लाह लिई सम्पूर्ण समस्याको समाधान गरी निरोगी खुशी जीवनको आनन्द लिऊ हाम्रो यहाँ इसिजी र ल्याब टेस्टको सम्पूर्ण सुविधा उपलब्ध छ स्थान डाक्टर बमबहादुरको क्लिनिक भागीरथी मेडिकल सेन्टर सामुदायिक रेडियो टिकापुर एफएमको नजिकै टिकापुर टाढाका बिरामीहरूले नाम लेखाउन र विस्तृत जानकारीको लागि सम्पर्क नम्बर 091-560-228-97083-58-835 र 98-650-40-777 समय बिहान 10 बजेदेखि दिउँसो 3 बजेसम्म डाक्टर आउने दिन साउन 9 गते दोस्रो शनि
0: स्वागत बा जानकी गाउँपालिका वार्डमा 9 बोकलवा स्थित के असल छिमेकी कृषि सहकारी संस्था सहकारीमा आबद्ध कृषक खुकरन कृषि सामग्री वितरण करलबा सहकारी से कृषक खुकरन हजारी क्यारी पुस्तक कुटो लगायत के सामग्री वितरण करलख हो। सहकारी के सदस्य शुक्रन के आयोजन में सहयोग पुग्ना उद्देश्य से बंगुर के पाठा वितरण करना और बंगुर पालन छेगरी पालन में सहुलियत ब्याज में लगानी करना असल छिमेकी कृषि सहकारी संस्था लिमिटेड के व्यवस्थापक कविता चौधरी जानकारी दिले बाटै जानकी गांव पालिका वार्ड नंबर 8 भकरैया के जानकी चौधरी फे सहकारी मनसे पायल कृषि सामग्री समेत कृषि काम में सहयोग पुग्ना बठोले बाटै वहां सहकारी से कृषि सामग्री संगे तरकारी खेती में मल प्रयोग के बारे में जानकारी पायल बटोले बाटै कृषि सामग्री गुड न्यूवर्स इंटरनेशनल नेपाल के आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग साझेदारी में संस्था सेवक नेपाल के समन्वय में वितरण कर लखो। सहकारी संस्था से सदस्य हुकरन आय आर्जन में सहयोग पुग्ना उद्देश्य से सामग्री वितरण करलो तालीम संचालन करते आयलबा। यातायात व्यवसाय हुकरन के छाता संस्थान नेपाल यातायात व्यवसाय राष्ट्रीय महासंघ से दुर्घटना में राहत को से बलगर बनाईना पेट्रोलियम पदार्थ में प्रति लीटर 1 रूपया विद्युत चार्ज में शुल्क प्रति यूनिट समेत 1 रूपया अतिरिक्त शुल्क उठैना सुझाव समेत दे गिल्वा। पूर्वाधार विकास मंत्री सुनील लम्सालो कानूनी न्याय तथा सांसदीय मामिला मंत्री सविता गौतम हे समेत छुट्टा छुट्टे ज्ञापन पत्र बुझैती महासंघ से संशोधन के प्रक्रिया में रलक सवारी एन में सवारी दुर्घटना में पीड़ित ठुकरन केलक तत्काल उद्धार उपचार और क्षतिपूर्ति केलक दुर्घटना में राहत कोष स्थापना केलक अतिरिक्त शुल्क उठैना समेत सुझाव दे गिल्वा। महासंघ के समेत महासचिव देवनाथ गौतम से देशभर संचालन में रहल निजी तथा सार्वजनिक सवारी साधन मध्य के प्रयोग करना पेट्रोल और डीजल के प्रति लीटर समेत 1 रूपया ठप करना विद्युतीय सवारी साधन से खपत करना प्रति यूनिट बिजुली में समेत 1 रूपया ठप करना सुझाव सरकार हे देहल जानकारी देहलबा। बाहेक बीमा कंपनी के संलग्नता करना तेसरा पक्ष बीमा प्रीमियम में समेत 1% रकम कोष में जमा करना संघ प्रदेश और स्थानीय सरकार से वार्षिक रूप में एकमुश्त समेत रकम कोष में जमा करना प्रस्ताव फे पेश कर बताइल बा। देशभर मानसूनी के समेत प्रभाव बढ़ती गैलक जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखा से अधिकांश स्थान में पानी पर्न संभावना रहल बटी आयल बा। हाल मानसून की न्यून चापीय रेखा सरदर पश्चिम के सरदर स्थान से कुछ ऊपर रहलक तराई भूभाग में आसपास तथा पूर्व में सरदर स्थान में आसपास रलक बटागिल बा। हाल देशभर मौसम बदलन बाकर से कोशी बागमती गंडकी लुम्बिनी प्रदेश के कुछ तथा कर्णाली प्रदेश के एक दो स्थान में हल्का से लेके मध्यम पानी पड़ते रलग बा। महाशाखा के अनुसार आज दोपहर के देशभर अधिकांश मौसम बदलना बाकल से हिमाली पहाड़ियों तराई क्षेत्र में अधिकांश स्थान में मेघगर्जन और चट्टांग सहित के मध्यम वर्षा के संभावना रहल बा। उच्च हिमाली क्षेत्र में फे वर्षा हिमपात के संभावना रहल बा। कोशी लुम्बिनी और सुदूरपश्चिम प्रदेश के पहाड़ी तथा तराई क्षेत्र के कुछ स्थान तथा बागमती और गंडकी प्रदेश के एकाध स्थान में मधेश बागमती और गंडकी प्रदेश के तराई के एक दो स्थान में भारी पानी पर्न संभावना रहलक महाशाखा से जनाइल बा। कोशी गंडकी लुम्बिनी और सुदूरपश्चिम प्रदेश के पहाड़ी तथा तराई भूभाग के एक दो स्थान में अति भारी पानी पर्न बा। सहकर के आज रात के फिर देशभर अधिकांश स्थान में मौसम बदलन बा। हिमाली क्षेत्र में कुछ स्थान में मेघगर्जन और चट्टांग सहित मध्यम वर्षा तथा हिमपात की संभावना रहल बा। कोशी और सुदूरपश्चिम प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्र में अधिकांश स्थान तथा बागमती गंडकी लुम्बिनी कर्णाली प्रदेश के पहाड़ी और तराई क्षेत्र में अधिकांश स्थान में मेघगर्जन और चट्टांग सहित मध्यम वर्षा की संभावना रहल महाशाखा से जनाइल बा। खोजखर में फेन से विश्राम विश्राम पास फिर से एबी सुनती रवि सामुदायिक रेडियो टिगापुर एफएम।
5: के तपाईलाई किचन वायरिंग र पूजाका लागि कुनै पनि सामग्री चाहिएको छ? यदि चाहिएको छ भने ग्रीष्म टेरसलाई सम्झिनुहोस्।
6: ग्रीष्म आटेडसमा पाइने सामग्रीहरू
7: नलका, नलकाका सामान, नलकाका पाइप, फरुवा, कुटो, कोदालो, बन्चरो,
6: हटब्याग, थर्मस, जर्किन, पानी तताउने इलेक्ट्रिकल रड, भान्साका लागि किचन ऱ्याक, प्लास्टिकको सामान, घर वायरिङका सामान, पूजाका लागि सम्पूर्ण सामग्रीहरू, पित्तलका भाँडाकुँडा, ग्यास सिलिन्डर, झाडु, छाता हाम्रो यहाँ सुखद मूल्यमा पाइनुका साथै भरपर्दो र विश्वासिलो सम्पूर्ण सामान पाइन्छ। एकचोटि सेवा गर्ने मौका अवश्य दिनुहोला। ग्रीष्म टेडस टिकापुर कैलाली, संचालक मदन राज देवकोटा, स्थान 60 अस्पतालको ठेक्कै अगाडि, सम्पर्क नम्बर 9849588।
8: बाबु, ए बाबु, काल मनिष मेडिकल में जाइस तो?
9: होइन है जेम, वहाँ अपन अनुहार बिगड़ के घर से बाहर नहीं निकलछु।
8: उहे मारे तो तुहिन वहाँ पठाई दो। यहाँ हेर ई पत्रिका में लिखल बा मनीष मेडिकल में अब छाला संबंधी समस्या रहल बिरामी हुकन बढ़िया डॉक्टर होइसे उपचार हुई था वही तोर समस्या फेन अस्ते बा जइबे तो समाधान हुई जाए।
9: ए हो दादू, अपन अनुहार बिगड़ के परेशान रहूं, तब तू मैं अब भी जाए।
0: याद करबी, मनीष मेडिकल हल टीकापुर में प्रत्येक महीना के दूसरा शनिवार काठमांडू के वरिष्ठ छाला यौन कुष्ठ तथा सौंदर्य रोग विशेषज्ञ डॉक्टर वा लोकेन्द्र लिम्बू से सेवा देती रहल बा। मनीष मेडिकल हल टीकापुर में पुरान से पुरान अनुहार में रहल चाया, पोटो, दंडीफोर, दाँत, खुजली, भुटला झरना, कपार के तालु खुलना, डेंड्रफ, इक्जेमा, सोरियासिस, कुष्ठ रोग, पुरान से पुरान ठीक नै हुइल घाव, खतिरा ओ यौन दुर्बलता के उपचार होती रहल बा। संपर्क मनीष मेडिकल हल अस्पताल रोड टीकापुर, फोन नंबर 9860071024 ओ 9846077417।
10: विश्राम पाछे फिर से स्वागत बावे। फ्रांस से हितैती इंग्लैंड फीफा विश्व कप 2026 के तेसरा स्थान बनेन सफल हिलबा। मियामी स्टेडियममा अटवार के समेत बिहान के हिला तेस्रा खेल स्थान के ला खेलमा फ्रान्स 6-4 से हितै थी, इंग्ल्याण्ड तेस्रा बनल के हो। इंग्ल्याण्ड के जीत के लक बुखायो से साक से समेत हैट्रिक पूरा करने, पहिल हाफमा समेत 2 गोल करलाक साका से 87 मिनट माफे समेत पेलांटी मार्फत गोल करती हैट्रिक पूरा कर के हुई। खेल के तेसरा मिनट मा समेत राइसस फे गोल करती, शुरुआत में नहीं अगरता लेलक इंग्लैंड से उगर पास से लगातार गोल करल रहा। 18 मिनट मा कैंसा से हेड मार्फत गोल करती इंग्लैंड 2 गोल के अगरता लेल रहा। उगर पास से साका से 37 मिनट तो पहल हाफ मा समेत इंजुरी समय मा गोल करती इंग्लैंड है, पहल हाफ में 4 गोल के अग्रता दिहाइल रह। सगर दूसरा हाफ में फ्रांस से लगातार 3 गोल लौटाइल रह। 48 मिनट में कप्तान किलियन एम्बाबे से फ्रांस से केलक समेत पहल गोल लौटाइल रह। ब्रांडली ब्राको से समेत 54 मिनट में और कप्तान एम्बाबे से 66 मिनट में गोल करती खेल है समेत 4-3 स्थिति में पुगाइल रह। खेल के 87 मिनट में इंग्लैंड से पेनाल्टी मार्फत गोल करती अग्रता दूरी बढ़ाई रहा। पेनाल्टी में साका से गोल करबेर दूसरा हाफ के इंजुरी समय में उस्मान देम्बेले से फे समेत गोल करती फ्रांस से खेल में लौटना प्रयास करल है। अंतिम समय में जूट बेलिंगहा से समेत गोल करती इंग्लैंड है 6-4 के जीत दिवाल के हुई। सन 1966 में विश्वकप की उपाधि जीतलक इंग्लैंड ओकर पाछे उत्कृष्ट स्थान हासिल करल के हो। या आगे सन 2018 में इंग्लैंड चौथा हुई रह। यह समाचार संगे खोज खबर रॉयल जैना से पहले खबर के मुख्य मुख्य शीर्षक फिर से। टीकापुर अस्पताल के प्रयोगशाला प्रमुख उमेश बजगाई के आंखियों कान में चोट, अस्पताल व्यवस्थापन समिति से सहयोग नहीं करल बजगाई परिवार के आरोप। कैलाली में आबिन फिर मुक्त कमाया पुनस्थापना हुईना बाकी, शिक्षा स्वास्थ्य और रोजगारी में पर्याप्त सहयोग नहीं पुगला गुनासा। जानकी नौ बोकलवा में सहकारी के शेयर सदस्य उपकरण सामग्री वितरण और विश्वकप में फ्रांस से हिटी थी इंग्लैंड तेसरा बनल। लिटा बकलक थारू भाषक खोज खबर अत्र और समाचार मध्यान्ह 12 बजे के
0: नेपाली भाषामा खबर सुन्न सकिया बेके खोज खबर से मई रतन चौधरी बिदा हुई सामुदायिक रेडियो टिकापुर एफएम सुन्तिर विराम र

0: नेपालगंज मेडिकल कलेज में कार्यरत वरिष्ठ यौन रोग मानसिक नशा एवं लागू औषध कंसल्टेंट न्यूरो साइकोट्रिक डॉक्टर आइनोडिन बागवान
1: साउन 16 गते तेस्रो शनिवार का दिन
2: आरोग्य मेडिकल सेंटर एंड क्लिनिक टीकापुर में आउँदै हुनुहुन्छ। त्यसैले यौन रोग मानसिक तथा नशा एवं लागू औषध संबंधी समस्या भएका बिरामीहरूले सम्पर्क गर्नुहोला।
0: लामो समयसम्म टाउको दुख्ने, बढी रिसाउने, झिझो मान्ने, बरबराउने, अमिलो व्यवहार गर्ने, कामकाजमा मन नलगाउने, एक्लै बसेर टुलाउने, भोक नलाग्ने, निन्द्रा नलाग्ने, दुब्लाउँदै जाने, धेरै रक्सी खाने, लागू पदार्थ सेवन गर्ने,
2: त्यस्तै बच्चा तथा वृद्ध ओछ्यानमा पिसाब गर्ने, स्मरण शक्तिको कमी तथा पढाइमा कमजोरी, छारे रोग, मिर्गी र बेला बेलामा बेहोस हुने समस्या, नकारात्मक सोचाइ आउने, यौन सम्बन्धी सम्पूर्ण समस्या भएका बिरामीहरूले अग्रिम नाम दर्ता गराउनुहोला।
1: डाक्टर आउने दिन साउन 16 गते तेस्रो शनिवार।
3: डाक्टर भेट्ने समय बिहान 8 बजेदेखि 12 बजेसम्म। बिरामी जाँच गर्ने स्थान आरोग्य मेडिकल सेन्टर एन्ड क्लिनिक अस्पताल रोड टिकापुर। टाढाका बिरामीले फोन मार्फत नाम दर्ता गर्न सक्नुहुनेछ। याद गर्नुहोस्, आरोग्य मेडिकल टिकापुरमा अबदेखि भिडियो एक्सरे सेवा उपलब्ध छ। सम्पर्क फोन नम्बर 9868 80 0008 र 9825 73 77 72।
4: आई बुढल्ला सुन्टो कि नै वान अन्डे गोज आगिलि न अब समय एक ठो घर गहना नि हो बनाइन आउने न पट्टा नि पैना त
5: अरे गहना बनाइन त हो दुकान खोस्ती खोस्ती परेशान आटु कहाँ बनाऊ कहाँ बनाऊ
4: तुहार बाट अस्तर तुहार रामपुरान दिदी कहिए नि सामुएल ज्वेलर्स म से गहना बना कान्छे कि कत्रा सुघर बना कन लबाटी
5: ए ले ले ठीक है बा चल हाली भाटवट खाई हो जाय कहूँ सामुएल ज्वेलर्स में गर गहना बनाई। सामुएल ज्वेलर्स बलभद्र चौक चिकापुर प्रोप्राइटर तेहरी सिंह सुनार।
4: हमारे यहाँ हरेक मेरी सुन चांदी के गर गहना बना जाए रसायन बिना रसायन के गर गहना बना जाए वो ऑर्डर अनुसार फिर बना जाए। मोबाइल नंबर 9864841208 ओ 9846239261।
6: समुन्नत समाज का लागी समावेशी आवाज सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम 101 मेगाहर्ट्ज़।

0: यदि मुस्कट औरत आज हेरोते पुरवा
1: उहट हेर बुढ़िया बरखाक समय छेबा पखारिक मुहका रुकल बाकी मुसवा आयल कला से आबो मुसवा खुशी सपवा से आइसे था
0: ओहो होनिका ठक्क समझनो घरक अंदर पादा झफास छे बाहर से कच्चा का पहिलवा काटा पर ना रह
1: हां असि करी हेर बुढ़िया ओ सिन्हो कला से काल मिट्टी ना वो टेला रोटी पका का बासी खाई दूसरा सर परिवार मने मिलकर सर सफाई कर भी दूसरा आंजर पांजर रहल पोहर का व्यवस्थापन कर भी तनी हुई
0: हुई था हो बुढ़वा असि डाला मत ध्यान घास पोहर झफास भी था मा साफ नुख बैठल रह सकता ना
1: वो हो से तक कलक हो छाई समीरा छावा विवेक तू ओ मई मिलकर घरक आंजर पांजर रहल ध्यान ध्यान घास काटी कालिक लानल काटे से घर से तनिक दूर कटकोरा लगाई पड़ल बखारिक मुहकर से सांप मुस्कुचू के पैठनी सेकना में चबट डार पड़ल दूसरा घर आंजर पांजर फसफार वो सफा हुई से सांप ऐना का कम हो जाए
0: कल शनिश्चर थे हो ध्यान का फुर्सत थे बा
2: सात बरखा छाटक समय में सुखा ठामा बैठ मन पड़े था मौसम में आपन बस्यारा में पानी पैसना फिला कोर से सुखा ठाव का खोजी में होकर बाहर निष्कट
3: मूस मुर्गी जसिन आहारा का खोजी करना क्रम में फिर सांप मानव बस्ती लघ आई सक
4: विश्वास लगना वो सही जानकारी पाइक लाग ओ लघ उपचार केंद्र कहाँ बा कई था पट्टा लगाए लाग आधिकारिक वेब पेज स्नेक बाइट नेपाल .org में जाख आवश्यक जानकारी लिख सकती था
5: नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय इपिडियोमोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा र राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा संचार केन्द्र विश्व स्वास्थ्य संगठन नेपाल WWF नेपालका साथै बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बद्ध सर्पदंश अनुसन्धान केन्द्रसँगको सहकार्यमा रोटरी इन्टरनेशनल एवं रोटरी क्लब अफ काठमाडौँ मिडटाउनका साथसाथै विश्वभरका रोटरी फ्रेन्ड्स एवं पार्टनर क्लबहरूद्वारा जनहितका लागि प्रस्तुत सन्देश
6: समुन्नत समाजका लागि समावेशी आवाज सामुदायिक रेडियो टिकापुर एफएम 101 मेगाहर्ज

0: आई बुढल्ला सुन्ठो कि नै वा नन्दी घुवाज आगिली न अब समय एक ठो घर गहना नै हो बनाइन आउने न पट्टा निपैना त
1: अरे गहना बनाइन त हो दुकान खोस्ती खोस्ती परेशाना तु कहाँ बनाऊ कहाँ बनाऊ
0: तुहार बाटा सरा तुहार रामपुरान दिदी कहिए नै सामुएल ज्वेलर्स मसे गहना बनाका आन्छे कि कत्रा सुघर बनाकन लबाटी
1: ए ले ले ठीक है बा चल हाली भात वट खाई आओ जायका हूँ सामुएल ज्वेलर्स में घर गहना बनाई सामुएल ज्वेलर्स बलभद्र चौक चिकापुर प्रोप्राइटर तेहरी सिंह सुनार
0: हमारे यहाँ हरेक मेरी सुन चांदी के गौर गहना बना जाए रसायन बिना रसायन के गौर गहना बना जाए वो ऑर्डर अनुसार फिर बना जाए मोबाइल नंबर 98684 41208 और 98486 39261।

0: कति रहेठ कभी पेन्सिल रहेठ कबू झल फटाका आज काकना हो बाबा फिर वस्त बाटिन गटिलो ठाउँ से झोला आनल से लड़का सामान निहर
1: ओहो ये बुढ़ा लिख में का हुई थी जरम भर भर बराइटी रहत
0: का हुई कबू लड़का कभी हेरा कैठ कबू पेन्सिल हेरा कैठ कबू झोले फटा कैठ बढ़िया ठाउँ से झोला लाना नहीं चिपठो
1: अरे कहाँ से नानम तो
0: कहाँ से लन बहु तो कहाँ टीकापुर में रलक रट गई यहाँ झोला उडोक मसे वहाँ झिंगरान दीदी कटरा से गुर झोला आनल बाटी ना कबू लड़का कहाँ पी रही थी ना कबू पेन्सिल रही थी ना झोला फाटल हुई थी कहिए आनल झोला जस का टस बाटिन ये बुढ़ोक ढंग कबू पसल छान कर झोला नहीं आना से आकठुई
1: लिया लिया मैं अब भी ही जाइबू रट गई यहाँ झोला उद्योग में रट गई यहाँ झोला उद्योग हमारे यहाँ ढेर डिजाइन के झोला मिलत जैसे स्कूल बैग कैरिंग बैग फाइल बैग लगेज बैग लगाए के ढेर डिजाइन के झोला ऑर्डर कर अनुसार से बना जाए पुरान बिगड़ल झोला है मरमत करा जाए एक चोट सेवा करना मौका जरूर देवी
2: प्रोपराइटर राम प्रसाद रतगैया संपर्क मोबाइल नंबर 98484223373
3: बाबू ए बाबू काल मनीष मेडिकल में जाइस तो
4: मई नहीं जाए वहाँ अपन अनुहार बिगड़ के घर से बाहर नहीं निकल छू
3: वह मारे तो तुहिन वहाँ पठाई दो यहाँ है पत्रिका में लिखल बा मनीष मेडिकल में अब छाला संबंधी समस्या रहल बिरामी हुकन बढ़िया डॉक्टर वही से उपचार हुई था वही तोर समस्या फैन अस्ते बा जैबे तो समाधान हुई जाए
4: ए हो दादू अपन अनुहार बिगड़ के परेशान रहू तब तो मैं अब भी जाए
5: याद कर भी मनीष मेडिकल हल टीकापुर में प्रत्येक महीना के दोसरा शनिवार काठमांडू के वरिष्ठ छाला यौन कुष्ठ तथा सौंदर्य रोग विशेषज्ञ डॉक्टर वा लोकेन्द्र लिम्बू से सेवा देती रहल बा मनीष मेडिकल हल टीकापुर में पुरान से पुरान अनुहार में रहल चाया पोटो डंडीफोर दाग खुजली भुटला झरना कपार के तालु खुलना डेंड्रप इक्जेमा सोरियासिस कुष्ठ रोग पुरान से पुरान ठीक नहीं हुई घाव खतीरा ओ यौन दुर्बलता उपचार होती रहल बा संपर्क मनीष मेडिकल हल अस्पताल रोड टीकापुर फोन नंबर 98600-71024 ओ 98046-77417

0: ला फेरि यो गाडीले धोका दिने भयो। जहिले पनि ब्याट्रीकै समस्या, ब्याट्रीकै समस्या। यो टिकापुरमा पनि ब्याट्री कहाँ पाइएला? टेन्सनमा भए म त अब।
1: भाइलाई थाहै रहेनछ, बस, ट्रक, टिफर, जीप, कार, ट्र्याक्टर, मोटरसाइकल लगायत सोलर इन्भर्टरमा लाग्ने ब्याट्री पनि सुपट मूल्यमा टिकुनिया भन्दा सस्तो मूल्यमा पाइन्छ नि।
0: ए, यो टिकापुरमा पनि पाइने रहेछ? कुन ठाउँमा पाइने रहेछ दिदी?
1: कहाँ हुनु भाइ, टिकापुर जमरापारी छ नि, सञ्जय ट्रेड एन्ड सप्लायर, त्यही पाइन्छ।
2: त्यहाँ त नेपालमा बनेको बेल्टा कम्पनीको 2 वर्षको ग्यारेन्टी भएको ई रिक्सा र टेम्पोमा चाहिने सामान सुपथ मूल्यमा थोक तथा फुटकर रूपमा बिक्री वितरण पनि हुन्छ।
0: ल ल दिदीलाई धन्यवाद, अब त म त्यही जान्छु।
3: हामी कहाँ सियट, एपोलो, भी रबर ब्रान्डको मोटरसाइकल, ट्र्याक्टर, बस, ट्रक, टिप्पर, जेसीबीमा लाग्ने सम्पूर्ण साइजका टायरहरू सुपथ मूल्यमा पाइन्छ। सञ्जय ट्रेड एन्ड सप्लायर्स, जमरापारी, टिकापुर, कैलाली, प्रोप्राइटर केवालाल चौधरी।
1: सम्पर्क नम्बर 091-560-470 र मोबाइल नम्बर 98-48-57-18-28।
4: बिटल 25 वर्ष के लम्बा अनुभव रहल डाक्टर हेमन्त स्वार्से टिकापुरमा सत्कार पोलिक्लिनिक प्राली गुम्बा रोड गोलचोक लगह आपन भवन से सेवा देती रहल सक्कु बेरमहेन जानकारी कराइटी। सत्कार पोलिक्लिनिकमा बिहान 7 बजे से संध्या 7 बजे सम मेर मेरिक रोग के उपचार तथा स्वास्थ्य परामर्श देना हुईलक मार बेरमहे उक्र सम्पर्क कैके उपचार सेवा लेह अनुरोध करती। सत्कार पोलिक्लिनिक से दे जैना सेवा, ओपीडी सेवा, डिजिटल वीडियो एक्सरे, ईसीजी सेवा, डिजिटल अत्याधुनिक भारी एक्सरे सेवा, नियमित ऑटो एनालाइजर से सक्कु रगत जांच फार्मेसी प्रयोगशाला सेवा, हाट जोड़नी सेवा, टूटल हाट जोड़नी में प्लास्टर सेवा, ईएनटी सेवा, सुरक्षित मातृत्व सेवा, गर्भवती जांच सेवा, यौन रोग के परामर्श तथा उपचार सेवा संग तालीम पायल स्वास्थ्य कर्मी से क्षय रोग तथा कुष्ठ रोग संबंधी सेवा फेले जाए। सम्पर्क सत्कार पोलिक्लिनिक प्राली गुम्बा रोड गोलचोक लगह टिकापुर कैलाली, फोन नम्बर 091-560-095 ओ मोबाइल नम्बर 98-48-42-73-59।

0: नरेन्द्र दादू मैं तो अपना फोन ऐसी डर से आ गई है भौजी कहाँ बाती
1: ओ गोन्दे में सुटल बाती बाबू चोली न भरिए
0: भौजी कहाँ से काटन अपना हन हरक आदर पावे तो सफा सुखर बनाई बाती तर फिर पार्टी तो जा रहा ना अपना हन
2: यहाँ पोली ऊपर कटलग हो नानी अपना एम्बुलेंस है खबर तो करना बाटा कटा देर में खुआ पुना हो
0: ना से भौजी हमारा बाटी अपना हना कुछ नहीं हुई दिन गुआरा हना जिन चलेगी वो नरेश दादू एम्बुलेंस लेना समय लागे से था नगर के मोटरसाइकिल बाक लाचे उन्हें में बैठा कर भौजी है ना सरपरल सा उपचार केंद्र ले जीना तैयारी करो पड़ल
1: ये बेला का खाना जात फे दी है न्यू इट ना स्वयं सेविका दीदी
0: हो अब ना ठीक कली डॉक्टर और निकट सम जरमेन कुछ से खवाई नहीं हुई
3: सपवा कट्टी की सहज वातावरण बनाए क्लाक सपवा कटलक अंगाना स्थिर बनेना प्रयास कर पठा तम्म कस बेलक लुगा गरगहना घरी पेटी मुन्द्री बाकल से फाफर करा दी बेरमिया अकेले से जन समस्या बिना बिलकुल से बेरमिया न शांत रह सहयोग कर पठा क्यों मने सपवा कटलक ठाव से ऊपर दौड़ी लिए कस खबरना फिर कठा अशिक कर से रक्त संचार में समस्या हुई सकता जेहीले करबेल सपवा दसलक शरीर का भाग काट का फाक पर्ना अवस्था थे आई सिक्ठा
4: सर्पदंश संबंधी भर पर्द ओ सही जानकारी प्राप्त कर ओ लगभग सर्पदंश उपचार केन्द्र कहाँ बाक पत्ता में एक लाख आधिकारिक वेब पेज www.snakebitenepal.org में हेर सेट दिठा
5: नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय इपिडियोमोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा र राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा संचार केन्द्र विश्व स्वास्थ्य संगठन नेपाल WWF नेपालका साथै बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बद्ध सर्पदंश अनुसन्धान केन्द्रसँगको सहकार्यमा रोटरी इन्टरनेशनल एवं रोटरी क्लब अफ काठमाडौँ मिड टाउनका साथसाथै विश्वभरका रोटरी फ्रेन्ड्स एवं पार्टनर क्लबहरूद्वारा जनहितका लागि प्रस्तुत सन्देश
6: टिकापुर नगरपालिका अन्तर्गतका सम्पूर्ण वडाहरूमा रहेका सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्ने लाभग्राहीहरूले प्रत्येक आर्थिक वर्षको साउनदेखि असोज मसान्तसम्म सामाजिक सुरक्षा भत्ता नवीकरण गर्नुपर्ने भएकोले सामाजिक सुरक्षा भत्ताको परिचय पत्र नागरिकता राष्ट्रिय परिचय पत्र लगायतका सम्पूर्ण कागजात सहित लाभग्राही स्वयं तपसिल बमोजिमको नवीकरण शिविरमा उपस्थित भई भत्ता नवीकरण गर्न गराउन हुन अनुरोध छ।
7: शिविर संचालन हुने स्थान
6: वडा नम्बर एक नयाँ नेपाल आधारभूत विद्यालय एकतापुर साउन 5 र 6 गते
7: कन्या प्रावि टिकापुर साउन 7 र 8 गते
6: नवदुर्गा आधारभूत विद्यालय ब्लक नम्बर 9 साउन 9 र 10 गते
7: कर्णाली मावि टिकापुर साउन 11 र 12 गते
6: सरस्वती मावि बनगाउ साउन 13 र 14 गते
7: जनजाति आधारभूत विद्यालय ज्योतिनगर साउन 15 र 16 गते
6: वडा नम्बर 4 को कार्यालय साउन 17 देखि 19 गतेसम्म
7: वडा नम्बर 2 को कार्यालय साउन 20 देखि 25 गतेसम्म
6: वडा नम्बर 3 को कार्यालय साउन 26 देखि 28 गतेसम्म
7: वडा नम्बर 5 को कार्यालय साउन 29 देखि 31 गतेसम्म
6: वडा नम्बर 6 को कार्यालय भदौ 1 गतेदेखि 3 गतेसम्म
7: वडा नम्बर 7 को कार्यालय भदौ 4 देखि 6 गतेसम्म
6: वडा नम्बर 8 को कार्यालय भदौ 7 देखि 9 गतेसम्म
7: र वडा नम्बर 9 को कार्यालय भदौ 10 देखि 11 गतेसम्म
6: सबै वडाहरूमा शिविर सञ्चालन हुने समय बिहान 8 बजेदेखि साँझ 5 बजेसम्म
8: याद गर्नुहोस् 60 वर्ष उमेर नपुगेका विधवा भत्ता प्राप्त गर्ने लाभग्राहीहरूले अर्को विवाह नगरेको सिफारिस र अपाङ्गता भत्ता प्राप्त गर्ने लाभग्राहीको हकमा अपाङ्गता परिचय पत्र अनिवार्य साथमा लिई आउनु पर्नेछ।
6: थप जानकारीको लागि टिकापुर नगरपालिका र सम्बन्धित वडा कार्यालय सम्पर्क नम्बर 98485018888 98485015 56 र 98486013434
7: टिकापुर नगरपालिका नगर कार्यपालिकाको कार्यालय टिकापुर।

0: का तीर कभी पेन्सिल कबू झल फटाका आजी का हो बाबा के उस बाटिन गतिलो ठाउसे झोला आनल से तो लड़का सामान निहरा
1: ओहो ये बुढ़ा लिख में का हुई थी जरम भर भर बर बर
0: का हुई कबू लड़का कभी हेरा कई कबू पेन्सिल हेरा कई कबू झोल फटा कई बढ़िया ठाउ से झोला लाना नहीं चिकठो
1: अरे कहाँ से ना नाम
0: कहाँ से लन वो तो कहा टीकापुर में रलक रख गई झोला उद्योग में से वहाँ झिंगरान दीदी कटरा सुगर झोला आनल बाटी ना कबू लड़का कहाँ पेरी थी ना कबू पेन्सिल रही ना झोला फाटल हुई कहिए आनल झोला दस का टस बाटिन ये बुढ़ोक ढंग कब्बू पसल छान कर झोला नहीं आना से आकर ठुई
1: लिया लिया मैं अब नहीं जाइबू रख गई झोला उद्योग में रख गई झोला उद्योग हमारे यहाँ ढेर डिजाइन के झोला मिलत जैसे स्कूल बैग कैरिंग बैग फाइल बैग लगेज बैग लगाए के ढेर डिजाइन के झोला ऑर्डर कर अनुसार से बना जाए पुरान बिगड़ा झोला है मरम्मत करा जाए एक चोट सेवा करना मौका जरूर देवी
2: प्रोपराइटर राम प्रसाद रतगैया संपर्क मोबाइल नंबर 98484223373।
3: बाबू ए बाबू कल मनीष मेडिकल में जाइस तो
4: मैं नहीं जाऊँ वहाँ अपन अनुहार बिगड़ के घर से बाहर नहीं निकल
3: उहे मारे तो तुहिन वहाँ पठाई तो यहाँ है पत्रिका में लिखल बा मनीष मेडिकल में अब छाला संबंधी समस्या रहल बिरानी हुकन बढ़िया डॉक्टर वही से उपचार हुई था वही तोर समस्या फैन अस्ते बा जैबे तो समाधान हुई जाए
4: ए हो दादू अपन अनुहार बिगड़ के परेशान रहूं तब तो मैं अब भी जाए
5: याद कर भी मनीष मेडिकल हल टीकापुर में प्रत्येक महीना के दूसरा शनिवार काठमांडू के वरिष्ठ छाला यौन कुष्ठ तथा सौंदर्य रोग विशेषज्ञ डॉक्टर वा लोकेन्द्र लिंबू से सेवा देती रहल बा मनीष मेडिकल हल टीकापुर में पुरान से पुरान अनुहार में रहल चाया पोटो डंडीफोर दाट खुंजली भुटला झरना कपार के तालु खुलना डेंड्रफ इक्जेमा सोरियासिस कुष्ठ रोग पुरान से पुरान ठीक नहीं हुई घाव खतीरा ओ यौन दुर्बलता के उपचार होती रहल बा संपर्क मनीष मेडिकल हल अस्पताल रोड टीकापुर फोन नंबर 98600-71024 ओ 98046-77417।

0: दाई नाच बा कहाँ जाए लग दोटा
1: पेशाब लाता चर्पी जाए टुका
0: ए रुको ना तो कोशिश हो कल से मैं टॉर्च लाइट और लट्ठी दिए तू ले खजा वो
1: काचे चुनो लट्ठी और टॉर्च लाइट
0: कहाँ करो रही दाई रात एक डाला बाहर निकल पड़ला से वाट वाले जाए पड़ला से दहिया फिर टॉर्च लाइट बार खा वो लम्बा लट्ठी ले खजा ना जाए पड़ता कहाँ करा की बर्खा छेद बा सांप रह सेट था टॉर्च का अजलाल से साफन दिया खसेट गई था वो लट्ठी ठेक ठेक आओ सुनकर साफ भक्त का
1: हो कतरा मजा सलाह डेली मार छोटकी छाई
0: दाई हम ना स्कूल मैडम सर हूँ साफ नुक इतना ठाव से न्याग पड़ला से वो काम करो पड़ला से दहिया फिर ठप होशियार भी पठा गई खो सीखे लाट का आम छेटवा दिवा झपा अथवा ध्यान घास चलक ठाव में न्याग पड़ला से लम्बा लट्ठी देख ठेक ठेक बजेटी न्याग पठा गई खो कल बाट
2: साफ बर्खा छाकक समय में सुखा ठामा बैठा मन पड़े था इ मौसम में आपन बस्यारा में पानी पैसना फिलकोर से सुखा ठाव का खोजी में होकर बाहर निस्कट
3: मूस मुर्गी जसिन आहारा का खोजी करना क्रम में फिर साफ मानव बस्ती लघ आई सक
1: विश्वास लगना वो सही जानकारी पाइक लाग ओ लगभग उपचार केंद्र कहाँ बा कैसा पता लगाए लाग आधिकारिक वेब पेज स्नेक बाइट नेपाल .org में जाकर आवश्यक जानकारी लिख सकते था
4: नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय इपिडियोमोलोजी तथा रोग नियंत्रण महाशाखा र राष्ट्रीय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा संचार केन्द्र विश्व स्वास्थ्य संगठन नेपाल WWF नेपालका साथै बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बद्ध सर्पदंश अनुसन्धान केन्द्र संघको सहकार्यमा रोटरी इन्टरनेशनल एवं रोटरी क्लब अफ काठमाडौँ मिड टाउनका साथसाथै विश्वभरका रोटरी फ्रेन्ड्स एवं पार्टनर क्लबहरूद्वारा जनहितका लागि प्रस्तुत सन्देश
5: के तपाईलाई किचन वायरिंग र पूजाका लागि कुनै पनि सामग्री चाहिएको छ यदि चाहिएको छ भने ग्रीष्म टेरसलाई सम्झिनुहोस्
6: ग्रीष्म टेरसमा पाइने सामग्रीहरू नलका नलकाका सामान नलकाका पाइप फरुवा कुटो कोदालो बन्चरो हट ब्याग थर्मस जर्किन पानी तताउने इलेक्ट्रिकल रड भान्साका लागि किचन ऱ्याक प्लास्टिकको सामान घर वायरिङका सामान पूजाका लागि सम्पूर्ण सामग्रीहरू पित्तलका भाँडाकुँडा ग्यास सिलिन्डर झाडु छाता हाम्रो यहाँ सुफत मूल्यमा पाइनुका साथै भरपर्दो र विश्वासिलो सम्पूर्ण सामान पाइन्छ एकचोटि सेवा गर्ने मौका अवश्य दिनुहोला ग्रीष्म टेरस टिकापुर कैराली संचालक मदनराज देवकोटा स्थान 60 अस्पतालको ठेक्कै अगाडि सम्पर्क नम्बर 9849858808
7: समुन्नत समाजका लागि समावेशी आवाज सामुदायिक रेडियो टिकापुर एफएम 101 मेगाहर्ज

0: कापी रही था कभी पेंसिल रही था कभी झोले फटाका आजी था का कना हो बाबा के उस टपाटीन गटीलो ठाउं से झोला अनले से तो लड़का सामान नहीं हरे
1: ओहो ये बुढ़ा लिख में का हुई थी जलम भर भर बराई थी रहत
0: का हुई कभू लड़का कभी हेरा कई था कभू पेंसिल हेरा कई था कभू झोले फटा कई था बढ़िया ठाउं से झोला लाना नहीं चिपठो
1: अरे कहाँ से ना नाम था
0: कहाँ से लन बहुत कहाँ टीकापुर मरलक रट गई झोला उद्योग में से वहाँ झिंगरान दीदी कटरा सुगर झोला अनला बाटी ना कबू लड़का कहाँ पी रही थी ना कबू पेंसिल ले रही थी ना झोला फाटल हुई थी कहीं एक आनल झोला दस कटरस बाटी ये बुरहक ढंग कबू पसल छान कर ना झोला नहीं आना से आकर ठुई
1: लिया लिया मैं अब भी ही जाइबू रट गई झोला उद्योग में रट गई झोला उद्योग हमारे यहाँ ढेर डिजाइन के झोला मिलत जैसे स्कूल बैग कैरिंग बैग फाइल बैग लगेज बैग लगाए के ढेर डिजाइन के झोला ऑर्डर कर अनुसार से बना जाए पुरान बिगड़ा झोला है मरम फेंकरा जाए एक चोट सेवा करना मौका जरूर देवी
2: प्रोपराइटर राम प्रसाद रत गैया संपर्क मोबाइल नंबर 98484-22373
3: आई हो बड्डो घर कहिया सीध जाइबो पाछ से शुरू करल मने घर सीध जा सकल
4: अरे का करू री बुढ़िया कठुआ खोजत खोजत परेशान हो गिल बाटू मिलबो नहीं करत का कही ना हो का
3: मिस्तरान बर्जन का ना घर हेरो ना पटा सुगुर बने लाट अल्मोनियम के मुआ का द्वार लगा का टूफे ओस्ट बनी हो ना ओट फिर पटानी हुई कि गुंगुआ बुरो हो ना कबू कहूँ घूम जाए था पाए
5: UPVC ब्रांड के मौका द्वार पार्टीशन स्टील की रेलिंग आगे पानी हो घाम से नहीं बिगड़ना खोले बेरो बंद करे बेर आवाज नहीं ना विशेषता हुई मौका द्वार पैना के संगे कठुआ के चौखट में अल्मोनियम के पल्ला हो द्वार फे लगा दे
6: मिलन अल्मोनियम एंड ग्लास हाउस जमरा के उपार टीकापुर कैलाली प्रोपराइटर मोहन राज भाट मोबाइल नंबर 98 48 51 43 26

0: 80% रोगहरू पानीकै कारणले लाग्छन्।
1: थोपा थोपामा शुद्धता, अत्याधुनिक अमेरिकन यूभी र ओजोनेटेड सहित रिभर्स ओस्मोसिस प्रविधिबाट प्रशोधन गरिएको
2: प्योर ड्रिंकिङ वाटर एक्वा शीतल बोतल तथा 20 लिटर जारमा सर्वत्र बजारमा उपलब्ध छ।
0: डेलिभरीका लागि
2: ड्रिंकिङ वाटर एक्वा शीतल
0: टिकापुर कैलाली
3: सम्पर्क मोबाइल नम्बर 9807106772। स्वास्थ्यका लागि पानी।
4: आई बुढल्ला सुन्टो कि नै वानन्दे भोज आगिलिन अब समय एक ठो घर गहना नि हो बनैना उनेना पट्टा नि पैना त
5: अधि गहना बनैना त हो दुकान खस्ती खस्ती परेशाना तु कहाँ बनाऊ कहाँ बनाऊ
4: तुहार बाटा अस्तरा तुहार रामपुरान दिदी ये नि सामुएल ज्वेलर्स मसे गहना बना कान्छे कि कतरा सुगर बना कन लबाटी
5: ए ले ले ठीक है बा चल हाली भाटवट खाइयो जाइका हुँ सामुएल ज्वेलर्स में घर गहना बनाई सामुएल ज्वेलर्स बलभद्र चौक टीकापुर प्रोप्राइटर तेहरी सिंह सुनार
4: हमारे यहाँ हरेक मेरी सुन चांदी के गर गहना बना जाए रसायन बिना रसायन के गर गहना बना जाए ओ ऑर्डर अनुसार फे बना जाए मोबाइल नंबर 9864 41 208 और 9846 39 261।

0: टीकापुर नगरपालिका अन्तर्गतका सम्पूर्ण वडाहरूमा रहेका सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्ने लाभग्राहीहरूले प्रत्येक आर्थिक वर्षको साउनदेखि असोज मसान्तसम्म सामाजिक सुरक्षा भत्ता नवीकरण गर्नुपर्ने भएकोले सामाजिक सुरक्षा भत्ताको परिचय पत्र, नागरिकता, राष्ट्रिय परिचय पत्र लगायतका सम्पूर्ण कागजात सहित लाभग्राही स्वयं तपसिल बमोजिमको नवीकरण शिविरमा उपस्थित भई भत्ता नवीकरण गर्न गराउन हुन अनुरोध छ।
1: शिविर सञ्चालन हुने स्थान
0: वडा नम्बर 1 नयाँ नेपाल आधारभूत विद्यालय एकतापुर साउन 5 र 6 गते,
1: कन्या प्रावि टीकापुर साउन 7 र 8 गते,
0: नवदुर्गा आधारभूत विद्यालय ब्लक नम्बर 9 साउन 9 र 10 गते,
1: कर्णाली मावि टीकापुर साउन 11 र 12 गते,
0: सरस्वती मावि बनगाउँ साउन 13 र 14 गते,
1: जनजाति आधारभूत विद्यालय ज्योतिनगर साउन 15 र 16 गते,
0: वडा नम्बर 4 को कार्यालय साउन 17 देखि 19 गतेसम्म,
1: वडा नम्बर 2 को कार्यालय साउन 20 देखि 25 गतेसम्म,
0: वडा नम्बर 3 को कार्यालय साउन 26 देखि 28 गतेसम्म,
1: वडा नम्बर 5 को कार्यालय साउन 29 देखि 31 गतेसम्म,
0: वडा नम्बर 6 को कार्यालय भदौ 1 गतेदेखि 3 गतेसम्म,
1: वडा नम्बर 7 को कार्यालय भदौ 4 देखि 6 गतेसम्म,
0: वडा नम्बर 8 को कार्यालय भदौ 7 देखि 9 गतेसम्म
1: र वडा नम्बर 9 को कार्यालय भदौ 10 देखि 11 गतेसम्म।
0: सबै वडाहरूमा शिविर सञ्चालन हुने समय बिहान 8 बजेदेखि साँझ 5 बजेसम्म।
2: याद गर्नुहोस्, 60 वर्ष उमेर नपुगेका विधवा भत्ता प्राप्त गर्ने लाभग्राहीहरूले अर्को विवाह नगरेको सिफारिस र अपाङ्गता भत्ता प्राप्त गर्ने लाभग्राहीको हकमा अपाङ्गता परिचय पत्र अनिवार्य साथमा लिई आउनु पर्नेछ।
0: थप जानकारीको लागि टीकापुर नगरपालिका र सम्बन्धित वडा कार्यालय सम्पर्क नम्बर 98485088, 98485015 र 98486134।
1: टीकापुर नगरपालिका नगर कार्यपालिकाको कार्यालय टीकापुर।
3: बाबु, ए बाबु, काल मनीष मेडिकल में जाइस तो?
4: मैले जाइ, वहाँ अपन अनुहार बिगड़ के घर से बाहर नहीं निकल छू।
3: उहे मारे तो तुहिन वहाँ पठाई लो। यहाँ हेर ई पत्रिका में लिखल बा मनीष मेडिकल में अब छाला संबंधी समस्या रहल बिरामी हुकन बढ़िया डॉक्टर वही से उपचार हुई था वही तोर समस्या फैन अस्ते बा जैबे तो समाधान हुई जाए।
4: ए हो दादू, अपन अनुहार बिगड़ के परेशान रहूं, तब तो मैं अब भी जाए।
5: याद करबी, मनीष मेडिकल हल टीकापुर में प्रत्येक महीना के दोसरा शनिवार काठमांडू के वरिष्ठ छाला यौन कुष्ठ तथा सौंदर्य रोग विशेषज्ञ डॉक्टर वा लोकेन्द्र लिम्बू से सेवा देती रहल बा। मनीष मेडिकल हल टीकापुर में पुरान से पुरान अनुहार में रहल चाया, पोटो, डंडीफोर, दाँत, खुजली, भुटला झरना, कपार के तालू खुलना, डेंड्रफ, इक्जेमा, सोरियासिस, कुष्ठ रोग, पुरान से पुरान ठीक नहीं हुई घाव, खटीरा ओ यौन दुर्बलता के उपचार होती रहल बा। संपर्क मनीष मेडिकल हल अस्पताल रोड टीकापुर, फोन नंबर 98600-71024 ओ 98046-77417।

0: आई बुढल्ला सुन्टो कि नै वहाँ नन्डे भुवाज आगिली न अब समय एक ठो घर गहना नि हो बनैना उनी ना पट्टा नि पैना त
1: अधि गहना बनैना त हो दुकान खोस्ती खोस्ती परेशाना तु कहाँ बनाऊ कहाँ बनाऊ
0: तुहार बाटस तर तुहार रामपुरान दिदी कहिए नै सामुएल ज्वेलर्स मसे गहना बना कान्छे कि कतरा सुघर बनाकन ल बाटी
1: ए ले ले ठीक है बा चल हाली भात वट खाई हो जायका हूँ सामुएल ज्वेलर्स में घर गहना बनाई सामुएल ज्वेलर्स बलभद्र चौक चिकापुर प्रोप्राइटर तेहरी सिंह सुनार
0: हमारे यहाँ हरेक मेरी सुन चांदी के गौर गहना बना जाए रसायन बिना रसायन के गौर गहना बना जाए वो ऑर्डर अनुसार फिर बना जाए मोबाइल नंबर 98684 41208 और 98486 39261
2: 11 प्रकार का विशेषज्ञ सेवाहरू अब टीकापुर अस्पताल में उपचार का लागि विशेषज्ञ चिकित्सक सेवाहरू
3: हाड़ जोड़ने विशेषज्ञ सेवा र विशेषकृत आर्थ्रोस्कोपी सेवा जोड़नी को दूरबीन बाट शल्यक्रिया
2: प्रसूति तथा स्त्री रोग विशेषज्ञ सेवा लैप्रोस्कोपी दूरबीन को माध्यम बाट पाठीघर को शल्यक्रिया सेवा
3: बाल रोग विशेषज्ञ सेवा जनरल सर्जन द्वारा विभिन्न किसिम का शल्यक्रिया सेवा लैप्रोस्कोपी दूरबीन को माध्यम बाट पेट को शल्यक्रिया सेवा
2: जनरल फिजिशियन विशेषज्ञ सेवा
3: रेडियोलॉजिस्ट विशेषज्ञ सेवा
2: दंत रोग सेवा
3: मृगौला का बिरामी का लागि डायलिसिस सेवा
2: मनोचिकित्सक विशेषज्ञ सेवा
4: हरेक महीना को प्रत्येक शनिवार
2: र सिटी स्कैन सेवा
3: गंभीर बिरामी का लागि भेन्टिलेटर सहित को आईसीयू एसडीयू सीईओएनसी र बाल बालिका का लागि एसएनसीयू सेवा
2: रोग पहचान का लागि प्रयोगशाला सेवा बायोकेमिस्ट्री इम्युनोलॉजी हिस्टोपैथोलॉजी माइक्रोबायोलॉजी पारासिटोलॉजी सेरोलॉजी इंडोस्कोपी क्लोनोस्कोपी डिजिटल वीडियो एक्सरे अल्ट्रासाउंड डिजिटल एक्सरे सेवा ईसीजी फिजियोथेरापी सेवा अस्पताल का अन्य सेवाहरू स्वास्थ्य बीमा सेवा सुरक्षित गर्भपतन सीएसी सेवा
3: फार्मासिस्ट द्वारा फार्मेसी सेवा 24 घंटा
2: इमर्जेन्सी सेवा एम्बुलेन्स सेवा सब वाहन सेवा
3: हिंसा पीड़ितहरूका लागि ओसीएमसी सेवा मेडिको लिगल सेवा
2: सब परीक्षण सेवा सर्पदंशको उपचार
3: 12 लक्षित समूहलाई निशुल्क स्वास्थ्य सेवा सामाजिक सेवा इकाई
2: जनस्वास्थ्य तर्फ खोप सेवा एआरटी सेवा टीबी लेप्रोसिजिन एक्सपोर्ट सेवा
3: सेवा पाउन कठिनाई भएमा अस्पताल प्रशासनको फोन नम्बर 091560488 सूचना अधिकारी पदमराज भट्ट फोन नम्बर 97628435 उपेन्द्र शाह 98216024 57 र अस्पताल व्यवस्थापन अधिकृत सरोज चौधरी को फोन नम्बर 98557853322 मा खबर गर्नुहोला वा टीकापुर अस्पताल को क्यूआर कोड मार्फत अनलाइन सुझाव गुनासा रेकर्ड गराउनुहोला।

0: किछ नैमै बिलाइरलै।
1: पेट सम्बन्धी सम्पूर्ण समस्याको उपचार तत्काल पोलिक्लिनिक प्राली टीकापुरमा।
2: पेट सम्बन्धी सम्पूर्ण समस्याको उपचार आधुनिक औषधि र आयुर्वेदिक औषधिद्वारा गरिने।
1: समस्याहरू किडनी र मृगौलाको पत्थरी तथा अन्य समस्याहरू,
2: महिनाको महिनावारी गडबडीको समस्या,
1: पाठीघर सम्बन्धी सम्पूर्ण समस्या,
2: पेट सम्बन्धी सम्पूर्ण समस्या,
1: गर्भवती महिलाको गर्भको अवस्थाको जाँच तथा परामर्श सेवा,
2: ईसीजी सेवा,
1: डिजिटल एक्सरे सेवा
2: र प्रयोगशाला ल्याब सेवा।
1: फोन नम्बर 9844273359 र 9848423359। सत्कार पोलिक्लिनिक प्राली गुम्बा रोड टीकापुर जालपा देवी मन्दिर नजिकै।
3: अरे सुन त, त्यो बाटाले पाजर त्यो बा
4: काहुल बाबु अपने कलका लाइट रही अपने काकर कलका लाइट रही लेओ यो भुइयामा के हो काकर भुइयामा धनवानाले बाटी मोटर जो खोज के असिया लाग के बैठनी हुई यह लगे बस्ती में मोर एकजाने मोटरसाइकिल वाला संघरिया बा फोन कई डार हूँ अपने निया अटैक है ना संघरिया ध्यान दी। हेलो मुकेश, तू जत्ते ही मोटरसाइकिल लेके यहाँ आ जाओ तो यहाँ एक जना बाबू है ना सपवा काट के ना इमरजेंसी पर गिन तुरंत ही उपचार केंद्र में ले जाए पड़ल राजमार्ग 84 मीटर पश्चिम बाऊ पांचर बाटी ना हमरा मुकेश जत्ते ही आओ हाँ सबकू काम छोड़
5: बेटा संतोष मैं मोटरसाइकिल लेके आई गिनू जत्ते
4: सुनी बाबू सपो कटलक मने है ना जत्रा साइकिल जत्ते ही एंटी वेनम उपलब्ध हुई उपचार केंद्र में ले जा रहे पड़ता ऐसी ब्याला में सबसे झटते हुई ना यातायात के साधन वाजे पर था यदि मोटरसाइकिल के व्यवस्था बाकल से अपने वो सवारी चालक के बीच सपो कटलक मने है ना सुरक्षित हुई ना मेरे से बैठा कर तुम के उपचार केंद्र पुराई पड़ता मुकेश मोटरसाइकिल लेके आ गई मोर भर पर संघरिया मैं तुरंत बेहद में है ना मुकेश के मोटरसाइकिल में बीच ऐसी बैठा कर उपचार केंद्र पुगा डार हूँ अपने मोटरसाइकिल लेके ओरी आये
3: लगा
6: दादू सात दस से मोटरसाइकिल स्वयं से दी बलाई सर्पदंश उपचार केंद्र जाकर जान बचाई
7: यदि समय में जो उपचार कर सकल से सांप डसलक मने बचाई सक दी था वो यही मसे हुई ना मृत्यु दर फे कम कर सक दी था सांप डसलक मने न छट्ट से छट्ट उपचार केंद्र में ले जा डारी यही ले ऊ मने एक जीवन बचाए भारी मदद कर था विश्वास लगना वो सही जानकारी पाइक लाग ओ लगभग उपचार केंद्र कहाँ बा कैथ पत्ता लगाए लाग आधिकारिक वेब पेज snakebitenepal.org में जाख आवश्यक जानकारी लिहे सकती था।
8: नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय इपिडियोमोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा र राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा संचार केन्द्र विश्व स्वास्थ्य संगठन नेपाल WWF नेपालका साथै बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बद्ध सर्पदंश अनुसन्धान केन्द्र संघको सहकार्यमा रोटरी इन्टरनेशनल एवं रोटरी क्लब अफ काठमाडौँ मिटटाउनका साथसाथै विश्वभरका रोटरी फ्रेन्ड्स एवं पार्टनर क्लबहरूद्वारा जनहितका लागि प्रस्तुत सन्देश

0: ती फिर चर्पी भर गिल का करना हो का
1: चर्पी भरल से फिर का चिंता आदित्य सेफ्टी टैंकी सर सफाई में फोन करी आ बा का सर सफाई कई दी
0: फोन नंबर कटरा हो तो
1: ली डायल करी 97 26 20 3 00
0: हेलो आदित्य सेफ्टी टैंकी सर सफाई हो महीन राजापुर बाजार में टैंकी सफाई करना बा
1: अपनों कंठे टीकापुर जानकी जोशीपुर भजनी सत्ती राजापुर गेरुआ वो लमकी मना सेफ्टी टैंकी गोबर गैस और रिंग वाला टॉयलेट सर सफाई कर परिकल से आदित्य सेफ्टी टैंकी सर सफाई सेवा हना समझावे संचालक शेरबहादुर थारू संपर्क नंबर 97 26 20 3 00 98 656 92 026

0: आज बजे थारू भाषा के खोज खबर में अपने हुकन स्वागत बा। खोज खबर से मैं सीता चौधरी के राम राम। अपने उकला सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम 101 मेगाहर्ट के संग अनलाइन में www.tikapureffm.org मोबाइल हाम्रो पात्र नेपाली पात्र में फेसन डिरल बाटी। खोज खबर शुरू करी खबर के मुख्य मुख्य शीर्षक से टीकापुरमा स्थानीय बाल अधिकार समिति ओ सरकारवाला केला बाल संरक्षण घटना व्यवस्थापन ओ बाल संरक्षण सूचना व्यवस्थापन प्रणाली सम्बन्धी तालिम। वर्षात लागल संग विद्यालयमा फलफूलकी बिरूवा लगैटी विद्यालयकै वातावरण हरियाली बनैटी। जलबिरेमा बस दुई ट्रकले ठोकलक 30 जना घाइते। ओ विश्वकपमा फ्रान्स हराइटी इंग्ल्याण्ड तेस्रो बनल। तालिममा बाल अधिकार ओ बाल संरक्षणकी अवस्था बाल बालिका के ऊपर हुना हिंसा दुर्व्यवहार शोषण व्यवस्था उहाँकनके पहिचान स्थानीय बाल अधिकार समितिके भूमिका ओ जिम्मेवारी बारे छलफल हिला। बाल संरक्षण बाल अधिकार केलक बाल अधिकार समिति घटना व्यवस्थापन घटना पहिचान उजुरी दर्ता जोखिम मूल्यांकन सुरक्षा आयोजना बारे जानकारी देना ओ जिम्मेवार बनेना उद्देश्य कार्यक्रम गरिबा। ओल्ड भिजन इन्टरनेशनल नेपालके सहयोग बाल कल्याण संघ टीकापुरके आयोजनामा शुरू हुलक तालिम उद्घाटन गर्दै ओल्ड भिजनके कैलाली जिल्ला संयोजक मंगल शाह आफ्ना बाल मैत्री ओ पोषण मैत्री स्थानीय शासन केला पालिका सघैती रहल बोटेटी बाल संरक्षण सूचना व्यवस्थापन प्रणाली सम्बन्धी समेत जानकारी दिन यही कार्यक्रम कला बोटिलोबाट शाहकी बाल संरक्षणकी घटना हुकुनकी व्यवस्थित अभिलेखीकरण करना उद्देश्य के ओल्ड भिजनके आफ्नो सिस्टम बनेलक बोटेटी। बाल संरक्षण सूचना व्यवस्थापन प्रणालीमा बाल बालिका के ऊपर हुलक घटना दर्ता तथा अभिलेखीकरण हुलक प्रभावित बाल बालिका आवश्यक सेवासम्म पहुँच पुगिन सजिलो हुन बुटिलोबाट कार्यक्रम सहजीकरण परामर्शदाता प्रेम बुढा कतिरहलबाट कार्यक्रम संचालन संरक्षण अधिकृत इन्द्रराज जोशी कर्ल रहे। वर्षात लागलसँग अधिकांश विद्यालयमा विद्यालयकै वातावरण हरियो देख्न लागल बा। विद्यालयमा प्राय यी सिजनमा धेरै प्रकारके फलफूलके बिरूवा लगाएकी विद्यालयकै वातावरणमा हरियाली बढ़िना गर्दैत प्राय सकु जसिन विद्यालयकै परिसर अब हरियाली देख्न सेकजाइत। विद्यालय हरियाली बढ़िना विद्यालय परिसरमा धेरै प्रकारके फलफूल बिरूवा लगेटीबाट कार्यका आधारभूत विद्यालय राजीपुर विद्यालयकै परिसरमा धेरै रंगीन फलफूलके कुछ बहुवर्षीय बिरूवा फेर लगाइल बुटिलोबाट प्रधानाध्यापक विद्यालयकै जोगी रावल बुटिलोबाट। विद्यालय एक असीम क्षेत्र हो जहाँ विद्यार्थी के हरेक खालके सीख अवसर प्राप्त करल परत सुन्दर से प्रत्येक देखना व अनुभव करके करलक सीप बढ़ी प्रभावकारी हुना हुलक। विद्यालय में विज्ञान के कैयों विषय वस्तु संग मेल खेना बोट बिरूवा लगेलक व विद्यालय दीर्घकालीन रूप में आर्थिक रूपल फे सक्षम बनैना व आम लीची बिरूवा फे लगेलक। जनप्रकाश आधारभूत विद्यालय के बाघमारा के प्रधानाध्यापक रघुनाथ उपाध्याय बोटिलोबाट आधारभूत तहके छोट बालबालिकाके रमाइना शिक्षण करना उदाहरण सहित सिखेना बिरूवा सम्बन्धी अध्ययन करना दूर जै नै परोस के उद्देश्य विद्यालय परिसरमा धेरै प्रकारके फलफूलके बिरूवा लगेलक। शक्ति देवी आधारभूत विद्यालयके प्रधानाध्यापक पवित्रा भण्डारी बोटिलोबाटी असनाको पूर्व उदाहरण केही खोत यी मौसममा विशेष गरी फलफूल लगाइना सिजनकै रूपमा लैजाइत। विद्यालयकै वातावरण हरियाली संघ विद्यालयकै एक विशेषता हो। विद्यालयकै वातावरण हरियाली बनिना सेक्रेसे ढ्योर बादमा फाइदा हुना देखजाइत। कञ्चनपुर प्रहरी भाटमस्य अवैध रूपमा भन्सार छली कर्के नेपालभित्रले धेरै खाद्य तथा किराना सामग्री बरामद कलबाट जिल्ला प्रहरी कार्यालय कञ्चनपुरकी अनुसार आइतबार इलाका प्रहरी कार्यालय गुड्डु चौकी मस्य खडलक प्रहरी टोली भीमदत्त नगरपालिका 11 स्थित गुड्डु चौकी क्षेत्रमा व्यवहारिक अवस्थामा फेला पलक अवैध सामान बरामद गरिबा। प्रहरी करिब 1,02,000 रूपियाँ मूल्य बराबरकी चिनी मिश्री दाल धेरै किसिमकी किराना तथा बिडी बिजन लगायतकै सामग्री बरामद कलक जनलबा। बरामद कलक सामान आवश्यक कानूनी कार्यवाही केला कञ्चनपुर भन्सार कार्यालय गुड्डु चौकी पठेलक जिल्ला प्रहरी कार्यालय कञ्चनपुर जनलबा। प्रहरी सीमा क्षेत्रमा हुना भन्सार छली तथा अवैध आयात नियन्त्रणका लागि निगरानी ओ चेक जाँच थप प्रभावकारी बनेलक जनलबाट। खोज खबरमा एकरी विश्राम विश्वम बासा फेरि सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम
1: टिकापुर बहुमुखी क्याम्पसमा नयाँ विद्यार्थी भर्ना खुल्यो।
2: टिकापुर बहुमुखी क्याम्पसमा स्नातक तहका विभिन्न शैक्षिक कार्यक्रमहरूमा शैक्षिक सत्र 2083-84 नयाँ विद्यार्थी भर्नाका लागि प्रवेश आवेदन फारम वितरण भइरहेको व्यवहार सम्बन्धित सबैका लागि जानकारी गराइन्छ।
1: संकायहरू व्यवस्थापन संकाय तर्फका शैक्षिक कार्यक्रमहरू
2: बीबीए र बीबीएस ऐच्छिक विषयहरू एकाउन्टेन्सी फाइनान्स र मार्केटिङ
1: प्रवेश परीक्षा सञ्चालन हुने मिति र समय बीबीए का लागि साउन 17 गते बिहान 8 बजे बीबीएस का लागि साउन 17 गते बिहान 10 बजे
2: शिक्षा शास्त्र संकाय बीएड ऐच्छिक विषयहरू इंग्लिश नेपाली हेल्थ एन्ड म्याथमेटिक्स
1: प्रवेश परीक्षा साउन 23 गते बिहान 11 बजे
2: मानविकी तथा सामाजिक शास्त्र संकाय बीए ऐच्छिक विषयहरू इंग्लिश डेभलपमेन्ट स्टडीज सोसियोलोजी एन्ड इकोनोमिक्स
1: प्रवेश परीक्षा साउन 24 गते बिहान 8 बजे कक्षा सञ्चालन भदौ 1 गते देखि
2: क्याम्पसका विशेषताहरू विश्वविद्यालय अनुदान आयोगबाट 1 वर्षदेखि निरन्तर गुणस्तरीय सुनिश्चितता तथा प्रत्यायन क्यूए प्राप्त सरकारी क्याम्पस
1: कुल विद्यार्थी भर्नाको 25% विद्यार्थीहरूलाई पूर्ण छात्रवृत्तिको व्यवस्था भएको
2: न्यून शुल्कमा गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गरिनुका साथै अनुसन्धान तथा नव प्रवर्तनमा जोड़ दिइने
1: पीएचडी तथा एमफिल गरेका अनुभवी प्राध्यापकहरूबाट प्राध्यापन गराइने
2: आईसीटी इंग्लिश ल्याङ्ग्वेज उद्यमशीलता लगायतका विभिन्न नन क्रेडिट कोर्सहरूका कक्षाहरू तथा विभिन्न अतिरिक्त क्रियाकलापहरू सञ्चालन गरिने
1: उपचार कक्ष ई लाइब्रेरी फ्री वाईफाई प्रोजेक्टर डिजिटल स्मार्ट बोर्ड सहितका कक्षा कोठा शुद्ध खानेपानी प्राथमिक उपचार कक्ष व्यवस्थित क्यान्टिन खेल मैदान लगायत सुविधा सम्पन्न भौतिक पूर्वाधारको व्यवस्था भएको
2: सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयका सम्बन्धन प्राप्त देशभरिका अन्य क्याम्पसहरूमा समेत स्थानान्तरण गर्न सकिने
1: कक्षा 12 को पूरक परीक्षामा सहभागी विद्यार्थीहरूले समेत प्रवेश परीक्षामा सहभागी हुन सक्नेछन्
2: थप जानकारीका लागि क्याम्पस प्रशासनको फोन नम्बर 091-560-088 र 561-088
1: टिकापुर बहुमुखी क्याम्पस टिकापुर कैलाली
3: के तपाईलाई थाहा छ
4: एउटा प्लास्टिक झोला नष्ट हुन 100 वर्ष लाग्छ फालिएको प्लास्टिकले नदी माटो वनस्पति जनावर मानिसलाई असर गर्छ
3: हो र
4: हो त हामीले तिनै प्रदूषणमा हुर्किएका विषाक्त वस्तुहरू खान्छौ प्लास्टिकमा बोकेका झोल पदार्थ उपभोग गर्छौ
3: अनि
4: खानासँगै प्लास्टिक जन्य पदार्थ पेटमा जान लागेकाले क्यान्सर जस्ता प्राणघातक रोगहरू लाग्न थालेका छन् प्लास्टिक खानबाट जोगिन यसको विकल्प रोजौ
3: के छ त विकल्प
4: सामान बोक्दा कपडाको झोला प्रयोग गरौं पकाएको तथा झोल खानेकुराहरू प्लास्टिकबाट टाढै राखौं
3: विस्तारै गर्दा हुँदैन
4: हुँदैन टिकापुर नगरपालिकाले साउन 1 गतेबाट प्लास्टिकको झोला प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाइसकेको छ
3: प्लास्टिक हटाऊ पृथ्वी बचाऊ
4: प्लास्टिक हटाऊ पृथ्वी बचाऊ टिकापुर नगरपालिका नगर कार्यपालिकाको कार्यालय सरसफाई शाखा टिकापुर कैलाली
5: बितल 25 वर्ष के लम्बा अनुभव रहल डाक्टर हेमन्त स्वार्से टिकापुरमा सत्कार पोलिक्लिनिक प्राली गुम्बा रोड गोलचोक लगह आपन भवन से सेवा देटी रहल सक्कु बेरमहेन जानकारी कराइटी सत्कार पोलिक्लिनिकमा बिहान 7 बजे से संध्या 7 बजे सम मेर मेरिक रोग के उपचार तथा स्वास्थ्य परामर्श देना हुईलक मारा बेरम्हे उक्र सम्पर्क कैके उपचार सेवा लेह अनुरोध करती सत्कार पोलिक्लिनिक से दे जैना सेवा ओपीडी सेवा डिजिटल वीडियो एक्सरे ईसीजी सेवा डिजिटल अत्याधुनिक भारी एक्सरे सेवा नियमित ऑटो एनालाइजर से सक्कु रगत जांच फार्मेसी प्रयोगशाला सेवा हाथ जोड़नी सेवा टूटल हाथ जोड़नी में प्लास्टर सेवा ईएनटी सेवा सुरक्षित मातृत्व सेवा गर्भवती जांच सेवा यौन रोग के परामर्श तथा उपचार सेवा संग तालीम पायल स्वास्थ्य कर्मी से क्षय रोग तथा कुष्ठ रोग संबंधी सेवा फेदे जाए सम्पर्क सत्कार पोलिक्लिनिक प्राली गुम्बा रोड गोलचोक लगह टिकापुर कैलाली फोन नम्बर 091-560-095 ओ मोबाइल नम्बर 98-48-42-73-59
0: विश्राम पासा फिर्से स्वागत बा नारायणघाट मुगलिन सड़क अन्तर्गत जलबिरेमा आज बिहानके दुई बस ओ एक ट्रक एक आपसमा ठोक्के 30 जना घाइते हुनबाट 1 जना के अवस्था गम्भीर बा नारायणघाटमा से मुगलिन तर्फ गइतिरहल बस ओहोतर्फ दिशातर्फ गइतिरहल ट्रक उच्छिन्ना क्रम विपरीत दिशामा से आइतिरहल बससँग ठोक्के उहाँ उक्र घाइते हुनबाट जिल्ला प्रहरी कार्यालयकी अनुसार घाटी मध्ये एक्काइसजना के चितवन मेडिकल कलेज र 9 जना के प्राण नो मेडिकल कलेजमा उपचार भुटिरहल्वा दुर्घटनाके कारण कुछ समय सड़कमा रोके सवारी साधन अवरोध हटलक्सन गन्तव्यतर्फ लागल्बाट बैटडीकी ग्रामीण कच्ची सड़कमा सवारी सञ्चालन करके रोक लगाइल्बा जिल्ला प्रहरी प्रशासन कार्यालय एकजना सूचना जारी गर्दै 3 दिनसम्म बैटडीकी ग्रामीण कच्ची सड़कमा सवारी सञ्चालन गर्न रोक लगाइल्बा जिल्ला प्रशासन कार्यालय बैटडी अविरल वर्षा वा मौसम जन्य विपदकै जोखिममा मध्यनजर गर्दै जिल्ला भित्रकै ग्रामीण कच्ची सड़कमा सवारी सञ्चालनमा अस्थायी रूपमा रोक लगाइलक जनाइल्बा प्रशासन उक्त अवधिमा सम्भावित पहिरो बढ़िया तथा सड़क अवरूद्ध हुन जोखिम उच्च रलक यात्रु सवारी चालकीय सुरक्षा प्राथमिकता धरती यसै निर्णय कलक जनिलवा पक्की सड़कमा समेत अत्यन्त सावधानी अपनाके केही सवारी सञ्चालन गर्न सकु चालक आग्रह गरिल्वा प्रमुख जिल्ला अधिकारी डाक्टर डिजन भट्टराईद्वारा जारी सूचना अनुसार राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण मनसून जन्य प्रकोपकी कारण बैटडीह उच्च जोखिम मुक्त जिल्लाकै सूचीमा धर्के साउन 2 गते शनिबार सन्झे 6 बजेसे साउन 4 गते सोमबार बिहानकै 6 बजेसम्म ग्रामीण कच्ची सड़कमा सवारी साधन सञ्चालन रूपमा रोक लगाइलक जिल्ला प्रशासन कार्यालय बैटडी जनिलवा जिल्ला प्रशासन कार्यालय कोनो फे विपद वा आपतकालीन अवस्थाकै जानकारी तथा तत्काल उद्धार केलाक राष्ट्रिय आपतकालीन नम्बरमा 1234 नेपाल प्रहरी सैम तथा सशस्त्र प्रहरी बल नेपालमा 1114 म सम्पर्क गर्न सर्वसाधारण अनुरोध गर्लबा मनसून सक्रिय हुरीसँग देशकै धुरसिंह जिल्लामा भरिया पहिरो सड़क अवरोधकै घटना भर्तिरहल बेला बैटडी प्रशासन जारी कल कि निर्णय नागरिकीय सुरक्षाकै लागि अपनालक पूर्व सावधानीपूर्ण कदम रूपमा हेरगिर्वा प्रशासन मौसम के अवस्थाबारे निरन्तर जानकारी लिन वा अत्यावश्यक बाहे जोखिमपूर्ण यात्रा नै गर्न फे सकुझान अपील गर्लबाट खोज खबरमा फेरसे विश्राम विश्राम पासा फेरसे विश्वन्तिर सामुदायिक रेडियो टिकापुर एफएम
6: आई हो बड्डो घर कहिया सिर्जैब पाछसे शुरू करल मने घर सिजार सेकल
7: अरे का करू री बुढिया कठुआ खोजत खोजत परेशान हो गेल बाटू मिलबो नि करत का कैना हो का
6: मिस्तरान बर्जनौ कना घर हेरो ना पट्टा सुगुर बनैल बाट आल्मोनियम के मुआका द्वार लगाक टुफे ओस्ट बनी हो ना ओट्टफे पटानी हुए कि गोंगुआ बुढो हो ना कबू कहूँ घुम जाए तो था पाए
8: यूपीभीसी ब्रांड के मौका द्वार पार्टिशन स्टील की रेलिंग आगे पानी हो घाम से नहीं बिगड़ना खोले बेरो बंद करे बेर आवाज नहीं ना विशेषतः हुलक मौका द्वार पैना के संगे कठुआ के चौखट में अल्मोनियम के पल्ला हो द्वार फे लगा जाए
9: मिलन अल्मोनियम एंड ग्लास हाउस जमरा के उपार टीकापुर कैलाली प्रोप्राइटर मोहन राज भाट मोबाइल नंबर 9848513426
10: नेपालगंज मेडिकल कलेजमा कार्यरत वरिष्ठ यौन रोग मानसिक नशा एवं लागू औषध कन्सल्टेन्ट न्यूरो साइकोट्रिक डाक्टर आइनोडिन बागवान
11: साउन 16 गते तेस्रो शनिबारका दिन
12: आरोग्य मेडिकल सेन्टर एन्ड क्लिनिक टिकापुरमा आउँदै हुनुहुन्छ। त्यसैले यौन रोग मानसिक तथा नशा एवं लागू औषध सम्बन्धी समस्या भएका बिरामीहरूले सम्पर्क गर्नुहोला।
10: लामो समयसम्म टाउको दुख्ने बढी रिसाउने झिजो मान्ने बरबराउने अमिलो व्यवहार गर्ने कामकाजमा मन नलगाउने एक्लै बसेर टुलाउने भोक नलाग्ने निन्द्रा नलाग्ने दुब्लाउँदै जाने धेरै रक्सी खाने लागू पदार्थ सेवन गर्ने
12: त्यस्तै बच्चा तथा वृद्ध ओछ्यानमा पिसाब गर्ने स्मरण शक्तिको कमी तथा पढाइमा कमजोरी छारे रोग मिर्गी र बेला बेलामा बेहोस हुने समस्या नकारात्मक सोचाइ आउने यौन सम्बन्धी सम्पूर्ण समस्या भएका बिरामीहरूले अग्रिम नाम दर्ता गराउनुहोला।
11: डाक्टर आउने दिन साउन 16 गते तेस्रो शनिबार
13: डाक्टर भेट्ने समय बिहान 8 बजेदेखि 12 बजेसम्म बिरामी जाँच गर्ने स्थान आरोग्य मेडिकल सेन्टर एन्ड क्लिनिक अस्पताल रोड टिकापुर टाढाका बिरामीले फोन मार्फत नाम दर्ता गर्न सक्नुहुनेछ। याद गर्नुहोस् आरोग्य मेडिकल टिकापुरमा अबदेखि भिडियो एक्सरे सेवा उपलब्ध छ। सम्पर्क फोन नम्बर 9868080008 र 9825637772।
14: के तपाईलाई किचन वायरिंग र पूजाका लागि कुनै पनि सामग्री चाहिएको छ? यदि चाहिएको छ भने ग्रीष्म टेरसलाई सम्झिनुहोस्।
15: ग्रीष्म टेरेसमा पाइने सामग्रीहरू नलका, नलकाका सामान, नलकाका पाइप, फरुवा, कुटो, कोदालो, बन्चरो, हट ब्याग, थर्मस, जर्किन, पानी तताउने इलेक्ट्रिकल रड, भान्साका लागि किचन ऱ्याक, प्लास्टिकको सामान, घर वायरिङका सामान, पूजाका लागि सम्पूर्ण सामग्रीहरू, पित्तलका भाँडाकुँडा, ग्यास सिलिन्डर, झाडु, छाता हाम्रो यहाँ सुफत मूल्यमा पाइनुका साथै भरपर्दो र विश्वासिलो सम्पूर्ण सामान पाइन्छ। एकचोटि सेवा गर्ने मौका अवश्य दिनुहोला। ग्रीष्मा टेडस टिकापुर कैलाली, संचालक मदनराज देवकोटा, स्थान 60 अस्पतालको ठ्याक्कै अगाडि, सम्पर्क नम्बर 9849588008।
16: विश्राम पाछा फेरि स्वागत बा आफ खेल खबर। फ्रान्स हटिटी इंग्ल्याण्ड फिफा विश्वकप 2026 के तेस्रो मनमा मियामी स्टेडियम आइतबार बिहानकी हुलक तेस्रो ठाउँमा खेलमा फ्रान्स 6-4 हरेटी इंग्ल्याण्ड तेस्रो बनाल्वा। इंग्ल्याण्ड के जितमा बुकायो शंका ह्याट्रिक पूरा कलर, पहिलो हाफमा दुई गोल कलक साका 87 मिनटमा पेनाल्टी मार्फत गोल कर्ती ह्याट्रिक पूरा कलबा। खेलके तेस्रो मिनटमा राइस गोल कर्ती शुरूआतमा अग्रताली लग, इंग्ल्याण्ड वाकरपाछा लगातार गोल करल। 18 मिनटमा कोन्सा हेडर मार्फत गोल कर्ती इंग्ल्याण्ड दुई गोलकै अग्रता दिलेल। वाकरपाछा साका 37 मिनट पहिलो हाफके इन्जुरी समयमा गोल कर्ती इंग्ल्याण्ड पहिलो हाफमा 4 गोलकी अग्रता दिलेल रहे। दोस्रो हाफमा फ्रान्स लगातार 3 गोल लौटेल। 48 मिनटमा कप्तान किलियन एम्बापे फ्रान्सकी लागि पहिलो गोल लौटेल। ब्राडली बार्कोह 54 मिनटमा, कप्तान एम्बापे 66 मिनटमा गोल कर्ती खेल 4-3 के स्थितिमा पुगेल। खेलके 87 मिनटमा इंग्ल्याण्ड पेनाल्टी मार्फत गोल कर्ती अग्रताकी दूरी बढेल। पेनाल्टीमा साका गोल कर्लक। दोस्रो हाफके इन्जुरी समयमा उस्मान डेम्बेल गोल कर्ती फ्रान्ससँग खेलमा लौटेन प्रयास कल, तर अन्तिम समयमा जुड बेलिङ्गमले गोल कर्ती इंग्ल्याण्ड 6-4 जित दिलेल। सन 1966 विश्वकपकी उपाधि जितल इंग्ल्याण्ड वकरपास उत्कृष्ट ठाउँ हासिल कर्ला रहे। इन्स्यास सन 2018 इंग्ल्याण्ड चौथो हुल रह। यही समाचार संघ खोज खबर वर जेनासी पहिले खबर के मुख्य शीर्षक फेरसेचो। टीकापुरमा स्थानीय बाल अधिकार समिति हो, सरकारवाला के लाग बाल संरक्षण घटना व्यवस्थापन हो, बाल संरक्षण सूचना व्यवस्थापन प्रणाली सम्बन्धी तालिम। बसात लागसँग विद्यालयमा फलफूल के बिरूवा लगती, विद्यालय के वातावरण हरियर हुने। जलगिरीमा दुई बस ठोके, ट्रक ठोकलक तीजना खाइके। विश्वकपमा फ्रान्स हटिटी इंग्ल्याण्ड तेस्रो बनल। दीता बुकला खोज खबर तरह प्राविधिक मित्र आकाश चौधरी ने धन्यवाद दी। आप बुकला खोज खबर से मैं सीता चौधरी विदा हिटू। अगर पास 6 बजे की खोज खबर सुनना सीखी सामुदायिक रेडियो टीका प्रायफम सुनती रवि राम राम।
17: सपा दशक दरम्यान रसरस अन्नमा ल्यान पुग्दासे हिँडेर
18: एक गति ना हाम्रो सहयोग कैखल डेन्टीबाटी बिहान मोटरसाइकल घुमाएको धर्ने करी ना
17: बैठा बैठा ब्रह्मान रसरस मर पार्छ बैठाई को एकजना ब्रह्मान पकड़का बैठी उपचार केन्द्र सम पुगाइबेर ब्रह्म्या बेहोस हुई से नापिला कोसे पासे पकड़ का बैठा पर्था का
19: ब्रह्मान अगर हुई कई के मई पकड़ के बैठा टू सुनील जी अपना देशी मोटरसाइकिल स्वयं सेवक हुई कारण सर्पदंशक ब्रह्मान उपचार केन्द्र लैजना सजिलो हुई बा
17: एम्बुलेंस और चार पहिया सवारी से मोटरसाइकिल जो सब कुछ हम सजिला पा दी था कतना ठमट मई असक मोटरसाइकिल स्वयं सेवक उपलब्ध बाट सजिला से वो झट्ट पाजिला से ब्रह्मान चार पहिया का सवारी साधन में सजिलो हुईना मेरक सुचा का लगभग एंटी भेनम हुईना उपचार केन्द्र में लै जाए पर्था
18: अपना उम्र जैनी करी ना मई द्वार लगा सके राजे
17: वहां न कतलक सपक फोटो खींचना बाटी कर से उठेनन बिहार फोटो हुईला से सपक चिन्ह सजिलो बैठा उपचार करना से सजिलो बैठा
19: फोटो मोर मोबाइल में बा अब हमरा जा जाए नहीं तो ढील हुई थी
20: सफर डल डारल कल से उपचार कला मोटरसाइकिल चालक व मोटरसाइकिल स्वयं सेवक से सहयोग ली बिरमे आना अपना वो मोटरसाइकिल चालक का बीच समा सुरक्षित हिना मेर से बैठाई वो लगभग एंटीवेनम उपलब्ध हुई ना सर्पदम से उपचार केन्द्र में ले जा डारी सप्प कटल से मोटरसाइकिल चालक बनाई लगभग सर्पदम से उपचार केन्द्र पुगाई जीवन रक्षा करी
21: सर्पदंश सम्बन्धी भरपर्दो ओ सही जानकारी प्राप्त कर ओ लगभग सर्पदंश उपचार केन्द्र कहाँबाकै छ पत्ता लगाइत लाग आधिकारिक वेबसाइट www.snakebitenepal.org मा यहाँ र सेट दिथा
1: नेपाल सरकार, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, इपिडियोमोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा र राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा संचार केन्द्र, विश्व स्वास्थ्य संगठन नेपाल, WWF नेपालका साथै बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बद्ध सर्पदंश अनुसन्धान केन्द्र संघको सहकार्यमा रोटरी इन्टरनेशनल एवं रोटरी क्लब अफ काठमाडौँ मिड टाउनका साथसाथै विश्वभरका रोटरी फ्रेन्ड्स एवं पार्टनर क्लबहरूद्वारा जनहितका लागि प्रस्तुत सन्देश।
2: समुन्नत समाजका लागि समावेशी आवाज सामुदायिक रेडियो टिकापुर एफएम 101 मेगाहर्ज।

0: बुढल्ला सुन्ठो कि नै वानन्दिया भुवाज आगिली न अब समय एक ठो घर गहना नि हो बनैना उनेना पट्टा नि पैना त
1: अरे गहना बनैना त हो दुकान खोस्ती खोस्ती परेशान आटु कहाँ बनाऊ कहाँ बनाऊ
0: तुहार बाटस तर तुहार रामपुरान दिदी कहिए नै सामुएल ज्वेलर्स मसे गहना बनाका आन्छे कि कत्रा सुघर बनाकन ल बाटी
1: ए ले ले ठीक है बा चल हाली भात वात खाई आओ जायका हूँ सामुएल ज्वेलर्स में घर गहना बनाई सामुएल ज्वेलर्स बलभद्र चौक टीकापुर प्रोप्राइटर बिहारी सिंह सुनार
0: हमारे यहाँ हरेक मेरी सुन चांदी के गौर गहना बना जाए रसायन बिना रसायन के गौर गहना बना जाए वो ऑर्डर अनुसार फिर बना जाए मोबाइल नंबर 98684 41268 और 98486 39261।

मिर्जापुर अस्पताल में छाला तथा यौन रोग विशेषज्ञ डाक्टर आने बारे को सूचना। टीकापुर अस्पताल में छाला तथा यौन रोग विशेषज्ञ डाक्टर प्रकृति बराल हरेक हप्ता को सोमवार और बिहीबार बिरामी जांच कर आने भाई छाला तथा यौन रोग संबंधी समस्या भएका बिरामी विशेषज्ञ सेवा लिन आउन हार्दिक अनुरोध गरिन्छ। टीकापुर अस्पताल, टीकापुर, कैलाली।

बिटल 25 वर्ष के लम्बा अनुभव रहल डाक्टर हेमन्त स्वार से टीकापुर में सत्कार पोलिक्लिनिक प्राली गुम्बा रोड गोलचोक लगह आपन भवन से सेवा देती रहल सक्कू बेरमहेन जानकारी कराईटी। सत्कार पोलिक्लिनिक में बिहान 7 बजे से संध्या 7 बजे सम मेर मेरिक रोग के उपचार तथा स्वास्थ्य परामर्श देना हुईलक मारा बेरमहे उकरा संपर्क कैके उपचार सेवा लेह अनुरोध करती। सत्कार पोलिक्लिनिक से दे जैना सेवा ओपीडी सेवा डिजिटल वीडियो एक्सरे ईसीजी सेवा डिजिटल अत्याधुनिक भारी एक्सरे सेवा नियमित ऑटो एनालाइजर से सक्कू रगत जांच फार्मेसी प्रयोगशाला सेवा हाथ जोड़नी सेवा टूटल हाथ जोड़नी में प्लास्टर सेवा ईएनटी सेवा सुरक्षित मातृत्व सेवा गर्भवती जांच सेवा यौन रोग के परामर्श तथा उपचार सेवा संग तालीम पायल स्वास्थ्य कर्मी से क्षय रोग तथा कुष्ठ रोग संबंधी सेवा फैले जाए। संपर्क सत्कार पोलिक्लिनिक प्राली गुम्बा रोड गोलचोक लगह टीकापुर कैलाली फोन नंबर 091-560-095 ओ मोबाइल नंबर 98-48-42-59।

0: बाबू ए बाबू काल मनीष मेडिकल में जाइस तो
1: मई नहीं जाय वहाँ अपन अनुहार बिगड़ के घर से बाहर नहीं निकल छू
0: वह मारे तो तुहिन वहाँ पठाई तू यहाँ हेर ई पत्रिका में लिखल बा मनीष मेडिकल में अब छाला संबंधी समस्या रहल बिरामी हुकरन बढ़िया डॉक्टर वही से उपचार हुई था वही तोर समस्या फैन अस्ते बा जैबे तो समाधान हुई जाए
1: ए हो दादू अपन अनुहार बिगड़ के परेशान रहूं तब तू मैं अब भी जाय
2: याद करबी मनीष मेडिकल हल टीकापुर में प्रत्येक महीना के दोसरा शनिवार काठमांडू के वरिष्ठ छाला यौन कुष्ठा तथा सौंदर्य रोग विशेषज्ञ डॉक्टर वा लोकेन्द्र लिंबू से सेवा देती रहल बा मनीष मेडिकल हल टीकापुर में पुरान से पुरान अनुहार में रहल चाया पोटो डंडीफोर दाग खुजली भुटला झरना कपार के तालु खुलना डेंड्रफ इक्जेमा सोरियासिस कुष्ठ रोग पुरान से पुरान ठीक नहीं हुई घाव खटीरा ओ यौन दुर्बलता के उपचार होती रहल बा
3: संपर्क मनीष मेडिकल हल अस्पताल रोड टीकापुर फोन नंबर 9860071024 ओ 9846774417
4: कार्यक्रम छोट मीट साता के बुधवार दिन के 1 बजे से अपने उगन थारू भाषा के कोई गीत मन परत
5: जब देखनो तो हिन है
4: यदि मन परत हुई कल से अपन मन सुनेना चाहती कल से हमन फोन करी और कही महीन ई गीत मन परत गीत के बोल बताई गीत मन परना के दुठो कारण वो गीत कौन एल्बम के हो या फिल्म के नाम बताई और अंतिम में एक जन के नाम अनिवार्य ले दी कल से हमारे गीत अपने पक्के से सुना तो उठाई मोबाइल और डायल कर भी 9051625555 साता के बुधवार दिन के 1 बजे जरूर डायल करे हुई कार्यक्रम छोट मीट में केवल सामुदायिक रेडियो टीकापुर FM 101 MHz में सुने ना बिस्तरी मई कार्यक्रम संचालक रमेश मिशन के साथ में

0: कबू कापी रहता कबू पेंसिल रहता कबू झोले फटा का आज का कना हो बाबा फिर उस बाटिन गटिलो ठाउँ से झोला आनला से तो लड़का सामान नहीं हरे
1: ओहो ये बुढ़ा लिख में का हुई थी जरम भर भर बराई थी राहत
0: का हुई कबू लड़का कभी हेरा कही था कबू पेंसिल हेरा कही था कबू झोले फटा कही था बढ़िया ठाउँ से झोला लाना नहीं चिक ठो
1: अरे कहाँ से ना नाम था
0: कहाँ से लन वो तो कहाँ टीकापुर में रलक रख गई झोला उडोक में से वहाँ झिंगरान दीदी कटरा से गुर झोला आन लाटी ना कबू लड़का कहाँ पी रही थी ना कबू पेंसिल ले रही थी ना झोला फाटल हुई थी कई एक आनल झोला दस कटरस बाटिन ये बुरहक ढंग कबू पसल छान कर झोला नहीं आना से आकठी
1: लिया लिया मैं अब दिन ही जाइबू रख गई झोला उद्योग में रख गई झोला उद्योग हमारे यहाँ ढेर डिजाइन के झोला मिलत जैसे स्कूल बैग कैरिंग बैग फाइल बैग लगेज बैग लगाए के ढेर डिजाइन के झोला ऑर्डर कर अनुसार से बना

0: 11 प्रकार का विशेषज्ञ सेवाहरू अब टीकापुर अस्पताल में उपचार का लागि विशेषज्ञ चिकित्सक सेवाहरू
1: हाड़ जोड़ने विशेषज्ञ सेवा र विशेषकृत आर्थ्रोस्कोपी सेवा जोड़नी को दूरबीन बाट शल्यक्रिया
0: प्रसूति तथा स्त्री रोग विशेषज्ञ सेवा लैप्रोस्कोपी दूरबीन को माध्यम बाट पाठीघर को शल्यक्रिया सेवा
1: बाल रोग विशेषज्ञ सेवा जनरल सर्जन द्वारा विभिन्न किसिम का शल्यक्रिया सेवा लैप्रोस्कोपी दूरबीन को माध्यम बाट पेट को शल्यक्रिया सेवा
0: जनरल फिजिशियन विशेषज्ञ सेवा
1: रेडियोलॉजिस्ट विशेषज्ञ सेवा
0: दन्त रोग सेवा
1: मृगौला का बिरामी का लागि डायलिसिस सेवा
0: मनोचिकित्सक विशेषज्ञ सेवा
2: हरेक महीना को प्रत्येक शनिवार
0: र सिटी स्कैन सेवा
1: गंभीर बिरामी का लागि भेन्टिलेटर सहित को आईसीयू एसडीयू सीईओएनसी र बालबालिका का लागि एसएनसीयू सेवा
0: रोग पहचान का लागि प्रयोगशाला सेवा बायोकेमिस्ट्री इम्युनोलॉजी हिस्टोपैथोलॉजी माइक्रोबायोलॉजी पारासिटोलॉजी सेरोलॉजी इंडोस्कोपी क्लोनोस्कोपी डिजिटल वीडियो एक्सरे अल्ट्रासाउंड डिजिटल एक्सरे सेवा ईसीजी फिजियोथेरापी सेवा अस्पताल का अन्य सेवाहरू स्वास्थ्य बीमा सेवा सुरक्षित गर्भपतन सीएसी सेवा
1: फार्मासिस्ट द्वारा फार्मेसी सेवा 24 घंटा
0: 24 घंटा इमर्जेन्सी सेवा एम्बुलेन्स सेवा सब वाहन सेवा
1: हिंसा पीड़ितहरूका लागि ओसीएमसी सेवा मेडिको लिगल सेवा
0: सब परीक्षण सेवा सर्पदंशको उपचार
1: 12 लक्षित समूहलाई निशुल्क स्वास्थ्य सेवा सामाजिक सेवा इकाई
0: जनस्वास्थ्य तर्फ खोप सेवा एआरटी सेवा टीबी लेप्रोसिजिन एक्सपोर्ट सेवा
1: सेवा पाउन कठिनाई भएमा अस्पताल प्रशासनको फोन नम्बर 091-560-488 सूचना अधिकारी पदमराज भट्ट फोन नम्बर 97-62-48-35 उपेन्द्र शाह 98-21-60-24-57 र अस्पताल व्यवस्थापन अधिकृत सरोज चौधरी को फोन नम्बर 98-57-85-63-22 मा खबर गर्नुहोला वा टीकापुर अस्पताल को क्यूआर कोड मार्फत अनलाइन सुझाव गुनासा रेकर्ड गराउनुहोला।
3: आज तिमी मेरो वरिपरि किन घुम्दैछ छोरी?
4: आमा मलाई सिक्री बनाइदिनुस् न, लाउन कस्तो रहरला छ।
3: पैसा पनि त हुनु पर्यो नि छोरी, फेरि पढ्ने लेख्ने मान्छेले।
4: मेरो खुतुर्के छ नि आमा, मैले कति धेरै पैसा जम्मा गरेकी छु, फेरि सुन त पछि पनि काम लाउन सक्यो नि।
3: कुरा राम्रै हो छोरी, तर कसकोमा जाने हो त?
4: न्यू अछाम जाल्पा देवीमा कस्तो राम्रो गहना पाउँदो रहेछ, अस्ति नै हेरिसके मैले त।
5: न्यू अछाम जाल्पा देवी ज्वेलर्स सिद्धार्थ चोक टीकापुर, न्यू अछाम जाल्पा देवी ज्वेलर्स मा नया नया डिजाइन का विभिन्न गर गहनाहरू माइली तिलहरी हार झुमका छड्के तिलहरी बाला चूरा चन्द्रमा जन्तर चन्द्रहार इन्डियन मंगलसूत्र औठी सिक्री बिनारसन का गर गहनाहरू पाइन्छन्। साथै चाँदीका सम्पूर्ण भाँडाकुँडा पनि उपलब्ध छन्। अछाम मंगलसैनको शाखा टीकापुरको सिद्धार्थ चोकमा रहेको जानकारी गराइन्छ। प्रोप्राइटर ध्रुव सुनार, फोन नम्बर 98-688-14-799 98-24-60-25-32। अछाम मंगलसैनका लागि ध्रुव सिंह सुनार, गोपाल सुनार, फोन नम्बर 98-24-67-28-25।

0: भागीरथी मेडिकल टीकापुरमा विशेषज्ञ डाक्टर आउने बारेको सूचना। डाक्टर बमबहादुरको क्लिनिक भागीरथी मेडिकल सेन्टर टीकापुरमा साउन 9 गते दोस्रो शनिबारका दिन नेपालगंज मेडिकल कलेजमा कार्यरत धेरै अनुभवी र सिनियर मानसिक रोग मिर्गी रोग तथा नशा रोग विशेषज्ञ डाक्टर तनवीर अहमद खान एमबीबीएस एमडी न्यूरो साइकेट्री आउने भएकोले निम्न समस्या भएका बिरामीहरूले समयमै नाम लेखाई मौकाको फाइदा उठाउनका लागि सबैमा जानकारी गराइन्छ। समस्याहरू मिर्गी रोग, मुखबाट फिजाएर घाँटी बाङ्गो भई बेहोस हुनु, मुटुको धड़कन कम वा ज्यादा हुनु, लामो समयदेखि टाउको दुख्नु, छटपटी लाग्नु, जिउ झमझम हुनु, जलन हुनु, चिन्ता मान्नु, जीवनसित निराश हुनु, आत्महत्याको इच्छा लाग्नु वा प्रयास गर्नु, धेरै शंका मान्नु, कानमा बोले जस्तो लाग्नु, कोठामा एक्लै बस्न मन लाग्नु, काममा मन नलाग्नु, झर्को मान्नु, रिसाउनु, बिना कारण हाँस्नु, मुस्कुराउनु, रुनु, घर छोडेर भाग्नु, यौन इच्छाको कमी हुनु, जाँड, गाँजा, चरेस, रक्सी, ब्राउन सुगर, नशाको चक्की जस्ता कुलतलाई छोडाउने उपचार र मानसिक तथा नशा सम्बन्धी सम्पूर्ण रोगको उपचार र सल्लाह लिई सम्पूर्ण समस्याको समाधान गरी निरोगी खुशी जीवनको आनन्द लिऊ। हाम्रो यहाँ इसिजी र ल्याब टेस्टको सम्पूर्ण सुविधा उपलब्ध छ। स्थान डाक्टर बमबहादुरको क्लिनिक भागीरथी मेडिकल सेन्टर, सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएमको नजिकै टीकापुर। टाढाका बिरामीहरूले नाम लेखाउन र विस्तृत जानकारीको लागि सम्पर्क नम्बर 091-560-228-97083-58-835 र 98-650-40-770। समय बिहान 10 बजेदेखि दिउँसो 3 बजेसम्म। डाक्टर आउने दिन साउन 9 गते दोस्रो शनिबार।
1: आओ आओ, तू टॉयलेट से आईना मत झील कर था संजू, कुछ समस्या तो नहीं हुई?
2: कुछ नहीं हुई सर, टॉयलेट के अंदर आ सफा रख लू, सर लग के घूमत रहते हूँ, जैसे चेयर सर लग में तो हलचल नहीं कर, मोर सब अगर के छा पहनो तो टॉयलेट जाके
1: मोर सब को ना चलेना तो नहीं चले दो ना
2: नहीं चले ना सर
1: विद्यार्थी भैया बाबू तुरा से कह रो मोर सब को देखो कल से भैया ना चलाए नहीं बिठा सप्पा मूल सेठी वाकर मरहल 20 असर निकलत खाना नहीं हो जीती हाँ मूल सप्पा मूल देख पड़ना सप्पा है ना नंता हाँ सारे पकड़ा नहीं भी
2: सार मूल सप्पा देखना से क्या करना
1: सप्पा मूल अस देख पड़ना से थे जात से मूल नहीं रह सकत अथवा मूल कुछ देर पास असम थे सप्पा दस सकत वह वर्ष से मूल अवस्था में थे सप्पा हाथ से चलाई नहीं हुई गेंद तो इतना मल अच्छी ले चला था मूल नहीं मूल कहीं खजाना से भी था
3: मोल सापन से सावधान रही मोल वा मार्गी सपोहना पकड़ना व खेलना जिन करी मूलक कुछ बेर बासन की सपवा दस से था संभव हुई सम सपो फोटो खींची व पहचान कला विज्ञापन से संपर्क करी
4: सर्पदंग से संबंधी भर पर्द हो सही जानकारी प्राप्त कर वो लगभग सर्पदंग से उपचार केंद्र कहाँ बाक पता लगाई लाख आधिकारिक वेबपेज www.snakebitenepal.org में हेरा सेवा
5: नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय इपिडियोमोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा र राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा संचार केन्द्र विश्व स्वास्थ्य संगठन नेपाल WWF नेपालका साथै बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बद्ध सर्पदंश अनुसन्धान केन्द्र संघको सहकार्यमा रोटरी इन्टरनेशनल एवं रोटरी क्लब अफ काठमाडौँ मिडटाउनका साथसाथै विश्वभरका रोटरी फ्रेन्ड्स एवं पार्टनर क्लबहरूद्वारा जनहितका लागि प्रस्तुत सन्देश।